मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि बस बाहर इस धूप में कहीं पड़े रहें। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और हो रहा है तो प्लीज़ अपना जो रेडियो है वो ऑन रखें, और साथ में रोवा ऐप जो है इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त।

कुछ ऐसे गाने हैं जिनके सिग्नेचर स्टेप्स जो हैं वो हमेशा फेमस होते हैं, लेकिन हौले हौले एक और रीजन से भी फेमस हो गया, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ शाहरुख खान एंड अनुष्का एंड द मूवी इटसेल्फ, बट ऑफकोर्स अनुष्का ने किंग कोहली से शादी कर ली और उसके बाद से लोग कहते हैं किस्मत अलग तरीके से जो है ये मुड़ गई विराट कोहली जी की. बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उनको अपनी वाइफ से मिला, बहुत सपोर्ट मिला, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स ही डिड हिज 100%. बहुत मेहनत करी और आज वो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हाउ ही प्लेज, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हिज एटीट्यूड, हिज फिटनेस, हिज रूटीन, हाउ ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू हिज फैमिली, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई. मतलब विराट कोहली, मुझे तो कहीं रिटायरमेंट नज़र नहीं आती उनके लाइफ. मुझे लगता है ये बंदा जैसे जैसे जो भी करता जाएगा ना, हर चीज़ में इतना ज़्यादा इंटू रहता है, इतनी मेहनत करता है ना, कि मतलब एक इंस्पिरेशन बनता रहता है, बनता जाता है, मतलब बने ही जा रहे हैं. आपका क्या कहना है? मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए शायद मैं ऐसा बोल रही हूँ. मे बी आप इक्वली उस प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे जहाँ पर मैं हूँ विराट कोहली को लेके, बट एक बात तो मानना पड़ेगा, लाइक इज़ एन अमेजिंग प्लेयर एंड यस दिस मूवी वॉज वेरी गुड. पीले रंग का सूट पहना है, पीले रंग का स्कूटर, वॉज इट पीले रंग का स्कूटर? प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, क्या इसमें शाहरुख खान पीले रंग का स्कूटर पे अपना लंच बॉक्स लेके जाया करते थे? 5599 पे अपना आंसर मुझे भेजें.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
4: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
5: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
11: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
12: Super Cheap Auto's big brand sale is on now. Save big on Tuta Wax car detailing chemicals and accessories, now 25% off, and Raptor spray paints, now 20% off. Sale ends June 28th, T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.

सो मौसम बहुत खूबसूरत है और मौसम के बारे में और जानकारी मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मौसम के मज़े भी लेना बहुत ज़रूरी है। सो जब ऐसा सनी वेदर होता है ड्यूरिंग विंटर टाइम्स, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा करनी पसंद है आप मुझे बताएं 5599 पे। लेट्स हैव अ गुड कैचअप कन्वर्सेशन, चटपटी बातें अराउंड इट। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ आई हैड लाइक हैड अ रियली बिजी वीक, और जो वीकेंड आता है इट्स लाइक वार्म और अच्छा सन हो आउटसाइड, तो हाँ सन प्रोटेक्शन जो है इसको वेयर करने नहीं भूलने का, प्लीज़ वो वेयर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने कितने भी लेयर्स पहन रखे हो एंड ऑल, प्लीज़ सन प्रोटेक्शन ज़रूर वेयर करें अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो। मतलब मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी एक किताब लेके जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ लेकिन मैं उससे कोई एक थॉट निकाल के रोज़ पढ़ना चाहती हूँ या कभी कभार पढ़ना चाहती हूँ, ऐसी कोई किताब लेकर किसी बीच पर जाके बैठ जाने का, या कहीं पर थोड़ा हाइक करके एक पहाड़ पे जहाँ पे थोड़ा अच्छा व्यू है अगर सनसेट देखने को मिले एंड ऑल, वहाँ पर जाके लेट जाने का और किताब पढ़ने का या कोई म्यूज़िक सुनने का। या आजकल पॉडकास्ट का बहुत ट्रेंड है तो बहुत सारे लोग किंडल वगैरह लेके जाते हैं। आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ बुक्स, तो मुझे कोई किताब चाहिए होती है बुक मार्क की भी, जहाँ पर आप होता है ना पर्टिकुलर नोट्स जारी करते हो। तो दिस इज समथिंग विच आई लव डूइंग व्हेन इट्स सनी एंड इट्स कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। आप क्या करते हैं ये बताएं, और साथ में मैं आपके लिए और भी थोड़ी एक्टिविटीज़ लेकर आने वाली हूँ अगर आप सोच रहे हैं क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड। Just chill.

उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये बेहद खूबसूरत सा गाना, जो कि आज की हमारे दिन के साथ बिल्कुल सुटेबल है। इसी वजह से मैंने आपके लिए गाना बजाया, सो दैट इज द रीजन। बट ऐसी बहुत सारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। बट उसके साथ मैं अगेन आपसे बोलना चाहती हूँ कि रोवा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप दुनिया के किसी भी कोने से 24/7 जो है हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ हमारा म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा, बट वहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक स्टेशन्स हैं हमारे, जहाँ पर आपको फीजी के भजन्स और कीर्तन सुनने को मिलेंगे, आपको पंजाबी हिट्स सुनने को मिलेगा चढ़दी कला पंजाबी हिट्स पे, आपको राहत फतेह अली खान का अली खान जो अभी आने वाले हैं बहुत जल्द ही ऑकलैंड में, इसके बारे में और डिटेल्स लाऊंगी। इनकी कवालीज और सूफीज जो हैं एक स्टेशन में आपके लिए हमने क्लम करके रखा हुआ है। हम 80s ज्यूक बॉक्स आप सुन सकते हैं, जहां पर नॉन स्टॉप 80s का म्यूज़िक है आपके लिए। आई जस्ट लव दिस स्टेशन। और इसके अलावा हम रिवाइंड भी है 60s 70s के जो हिट्स हैं, साथ में देश दुनिया में क्या हो रहा है सारा लेटेस्ट आपके लिए हम वहाँ पर लेकर आते रहते हैं। आप हमारे आरजेस के बारे में भी वहाँ पढ़ सकते हो, फोटो देख सकते हो, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट ऐप। सो भूले नहीं और जल्दी से जल्दी इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लें।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off all electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets, plus even more savings store-wide. In Sunday at Briscoes. See online for T's and C's.
6: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल

0: Just chill.
1: स्वागत है आपका, वेलकम बैक। एक बहुत ही खूबसूरत सा संडे जो है आप और मैं यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं इन ऑकलैंड। नाम है मेरा रक्षा, आपके साथ मैं यहाँ से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ 12 बजे से एंड शाम के 6 बजे तक आपका और मेरा साथ जो है यहाँ पर बना रहने वाला है। बहुत सारी चटपटी बातें आपके और मेरे बीच यहाँ होने वाली है, साथ में प्यारे प्यारे धमाल गाने भी मैं आपके लिए लेकर आ ही रही हूँ। बट साथ में ये जो प्यारा सा मौसम है, ये हम चाहते हैं फिंगर्स क्रॉस कि थोड़े और दिन रहें, बिकॉज इससे पहले एक थोड़ा एपिसोड जो हमने देखा है वो काफ़ी मतलब खराब था, डाउन था, और मूड जो है हमारा काफ़ी बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू हाउ द वेदर इज मोस्ट ऑफ अस। तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे आने वाला जो वीक है ये कैसा है। तो भाई आगे आने वाला वीक भी बहुत खूबसूरत सनी नज़र आ रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी कोल्ड, मिनिमम टेम्परेचर्स ड्रॉप करने वाले हैं। आज रात को 9 डिग्री है, मंडे 6 डिग्री, ट्यूजडे 5 डिग्री और वेंसडे 4 डिग्री। सो गाइज डोंट फॉरगेट, धूप अच्छी है, सनी है, लेकिन ठंड है मौसम में और बीमारियां भी बहुत फैल रखी हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें। गोइंग इनटू द वीक लेटर थर्सडे फ्राइडे जो है अगेन बरसात जो है। अब कैसे ऐसे हो सकता है ना कि हमेशा खिला खिला मौसम रो, यू नो, धूप छाँव। तो बट लेट्स नॉट गेट देयर। अभी आज से लेकर बुधवार तक चाहे आप काम पर हो चाहे जहाँ पर भी हो, मौसम रहने वाला है बहुत ही ग्लोइंग सा, और इसीलिए आप और मैं करने वाले हैं बहुत सारा ग्लो धमाल। और शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

So, कुछ ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिनकी केमिस्ट्री जो है ना इतनी मार्वेलस है कि जब स्क्रीन पे आती है तो हम फिदा हो जाते हैं। उनमें से हैं शाहरुख खान और जूही चावला। सो शाहरुख खान काजोल तो हैं, बट शाहरुख खान जूही चावला लाइक ग्रेट केमिस्ट्री जिस भी मूवी में आए हैं, आप जस्ट लव देम टुगेदर अ लॉट एज इंडिविजुअल एक्टर्स। अपने बाकी केमिस्ट्री भी इनकी रही है बॉलीवुड में, बट साथ में बहुत गजब का है। और अभी जो गाना हमने सुना बन के तेरा जोगी, पता नहीं क्यों ये इफ आई हैव अ लिस्ट ऑफ 50 सॉन्ग्स जो कि मैं सुनती हूँ हर दो महीने में बैक एंड फोर्थ, उसमें ये गाना ज़रूर है। एंड एवरी टाइम जो इसका हुक स्टेप है ना, बन के तेरा जोगी, वो मैं करती हूँ। अभी मैं स्टूडियो में भी कर रही थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा है? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला जो गाना है इसमें है यो यो हनी सिंह, और गाने के वीडियो में है सोनाक्षी, जिसमें एक रैप आता है इस गाने में, एक काम कर तू लॉक कर ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, और रोटी और भिंडी की बातें होती है उसमें। अभी उस रोटी और भिंडी की याद से मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी रोटी और भिंडी खाने का मन कर रहा है, और बिकॉज इट्स ऑल्सो लंच टाइम सो आई गो एंड सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। लेकिन तब तक आप जो है इस गाने को बहुत ही ध्यान से मज़े में सुने, और नाम है मेरा रक्षा, आपके साथ आपकी खिदमत में यहाँ मैं हाजिर हूँ।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
7: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off all electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets, plus even more savings store-wide. End Sunday at Briscoes. See online for T's and C's.
8: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
9: Non-stop Bollywood.
10: Hum.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
11: Just chill.
12: अगला जो यहाँ पर मैं गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, वो वन ऑफ द टॉप हिट्स रहा है इन टर्म्स ऑफ कौन से गाने बोलते हैं यार इनको, अभी मैं भूल गई, आइटम नंबर में वन ऑफ द टॉप रहा है, क्योंकि इस गाने में है कटरीना कैफ, जो कि मतलब कहाँ जीरो से, मतलब आई थिंक दिस जर्नी इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और हमें लगता है यार कैसे करेंगे, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ वैसा ही हाल कटरीना कैफ का था। अगर आप देखो उनका पहला गाना, पहली मूवी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहाँ जा रहा है, कुछ बीट के साथ नहीं जा रहा, कोई रिदम नहीं है, एंड देन शी कम्स अप विद दिस सॉन्ग, दिस आइटम नंबर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आइटम नंबर्स वी हैव एवर हैड इन टर्म्स ऑफ हाउ शी इज़ लुकिंग एंड शी इज़ डांसिंग। मैन मैं बात कर रही हूँ शीला की।

जवानी के बारे में और शी रॉक्ड इट. लेकिन भाई मुझे अच्छे से याद है जब ये गाना जो है आया था उस टाइम पर मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम लोग दोनों बहुत फिटनेस में इंटू आ गए थे. हमें था कि नहीं हमें ये चावल रोटी यू नो ऑल द ड्रामा नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, हमें डेफिसिट में खाना, हमें कीटो डाइट करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन. एंड ये गाना आया जिसमें आई थिंक 7 kgs या 10 kgs कुछ कैटरीना कैफ ने रिड्यूस किया था. सो आई रिमेम्बर एक दिन मैंने अपना डाइट तोड़ दिया और मेरे पापा ने मुझे बोला कि देखो कैटरीना कैफ इस गाने के लिए 10 kilo lose करी. कैसे तुम लोग अपना डाइट तोड़ सकते हो यार, देखो इसको. तो ऐसे हमें सिखाया गया है. लेकिन आई एम जस्ट इन ऑफ हाउ कैटरीना हैज़ बीन परफॉर्मिंग इन दिस सॉन्ग. तो बढ़ते हैं इस गाने की तरफ.

बहुत ही खूबसूरत सा गाना, कुमार सानू की आवाज़ फ्रॉम द मूवी परदेस। अभी बढ़ते हैं थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल बातों की तरफ, ज्ञान पेलना एंड ऑल, ये सब की आदत हम सबको है। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी को ज्ञान पेल रहे हैं, बेसिकली आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को भी थोड़ा मतलब एडवाइस दे लें वही सेम चीज़ और एक्शन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अभी जस्ट दिस लास्ट वीक मैं अपनी एक फ्रेंड को बहुत ज्ञान पेल रही थी अबाउट हाउ टू स्पेंड अ डे प्रोडक्टिवली, ठीक है ना। मतलब आई मेड, जब मैं उसको ये ज्ञान पेल रही थी, जब मैं उसको ये एडवाइस दे रही थी अराउंड यू नो मैनेजिंग टाइम फॉर वर्क, फॉर वर्कआउट, फॉर खाना पीना, मतलब कुकिंग एंड ऑल, और मैं खुद आजकल कुकिंग जो है काफ़ी कम कर रही हूँ, और जब मैं उसको बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इतना आसान तो है यार, बस मार्केट जाओ, यहाँ पे सब कुछ ऐसे मिलता है मार्केट में, बस एक साथ असेंबल करो, योर डिश इज़ रेडी। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं इतना ज्ञान पेल रही हूँ, पहले मैं खुद के ऊपर अप्लाई करूँ तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, कब होता है, क्या करते हैं आप, मेरे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं 5599।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
5: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार जैकी श्रॉफ अरशद वासी परेश रावल रवीना टंडन दिशा पटानी जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर
6: एक जबरदस्त कहानी है
7: और टाइटल क्या है फिल्म का
6: वेलकम टू द जंगल
5: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस

0: Just chill.
1: स्वागत है आपका, वेलकम बैक. बीइंग अ संडे, बहुत बार हम अभी बहुत सनी संडे है तो ज़रूर मन आपका किया होगा, मेरा किया है. एंड आई हैव बीन सन किस्ड, मतलब मैं शो स्टार्ट करने से पहले पूरा सन धूप लगा के, वो कहते हैं ना धूप सेक के जैसे कहते हैं, वो आई हूँ आज मैं स्टूडियो में. तो एक टाइम आएगा जब आप भी वापस जाओगे अंदर, आप सोचोगे आज की इफ़ यू आर डन विथ ऑल योर घर का सारा काम, लॉन्ड्री, ग्रॉसरी, अगर आप संडे या सैटरडे को करते हो तो आप सोचोगे यार क्या बैठ के देखें. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग टू वॉच हिंदी में, और अगर आपने अभी तक राख सीरीज़ नहीं देखी है, इसका सीज़न वन आपको प्राइम वीडियो पे मिलेगा, तो इट्स अ गुड वॉच. इट्स, अगर आपको कुछ ऐसा देखने का मन है जिसमें थोड़ा वायलेंस है, तो अगर आप वायलेंस नहीं देखना चाहते तो फिर दिस इज़ नॉट अ वॉच फॉर यू. लेकिन इस सीरीज़ में एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ऐसी एक्टिंग करी है, इतनी खौफनाक एक्टिंग करी है, कि उनकी खुद की जो वाइफ हैं, उन्होंने जब इस सीरीज़ को देखा जब ये लॉन्च हुआ, तो उन्होंने उनको बोला कि प्लीज़ तुम आज सोफे पे सो जाओ. इतना इम्पैक्ट कर गया उस वो कैरेक्टर उनके ऊपर, मतलब वहीं से आप खुद ही क्रिटिक कर सकते हो अपने खुद के काम को. सो मैं बात कर रही हूँ आकाश माखीजा के बारे में, जिन्होंने बाबू नाम का किरदार निभाया है इन दिस मूवी. एंड भाई एक्चुअल में देखकर लगता है वो खौफ जो है वो आपको इस कैरेक्टर को देख के टोटली एंड टोटली फील होगा. एंड आई रियली विश कि ऐसे जो एक्टर्स हैं जो यहाँ से यहाँ पे लॉन्च होते हैं और फिर कहीं गुम हो जाते हैं बिकॉज उनके पास उस तरीके का क्या बोलते हैं अप्रोच नहीं होता बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए. आई रियली होप समथिंग इज़ डन अबाउट इट. एंड ये जो एक्टर है इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दिस सीरीज ऑन अ संडे, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वॉट नेक्स्ट क्या देखें, तो प्राइम वीडियो पर राख जो है ये आप ज़रूर देख सकते हैं.

0: Just chill.
1: वेलकम बैक, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रक्षा। वापस से मैं आपका स्वागत करने वाली हूँ। अगर आपने अभी से मैं लॉगिन बोलने वाली थी भाई, लॉगिन कल करेंगे। अभी मंडे ब्लूज़ जो है देखो हिट होना शुरू हो गया है। बट हाँ, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, यहाँ पर आपके लिए मैं यानी रक्षा एक बहुत ही प्यारा सा संडे आफ्टरनून प्रोग्राम लेकर आई हूँ। और शाम को 6 बजे तक आपका और मेरा सफ़रनामा जो है यहाँ पर चलने वाला है। बात हमने बहुत सारे मुद्दों पे ऑलरेडी कर ली है, बट आगे बढ़ते हैं। इस घंटे में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़, क्या चल रहा है दुनिया में स्पोर्ट्स में, और साथ में रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कि इतने अच्छे वेदर में क्या किया जा सकता है, कहाँ आप जा सकते हो। और साथ में आपकी मेरी प्यारी बातें चलती रहेंगी। साथ में अगर आपके घर में किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, आप किसी को विश करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, भाई 5599 इज़ द प्लेटफॉर्म। अपने नाम के साथ आप मुझे अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं।

भाई एक ऐसा शो जिसके बारे में बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है और एक डर होता है कि भाई बात करने के बाद अपना करियर ना कहीं समाप्त हो जाए। आप समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि मेरे बहुत फेवरेट है स्टैंड अप कॉमेडियन क्या ओवरऑल मतलब कौन से कॉमेडियन है सिट स्टैंड आई डोंट नो बट इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में बात कर रही हूँ जिसका सेकेंड जो है मैं क्या बोलूँ अभी क्या डालते हैं मिर्ची नींबू हाँ मुझे लगता है उसके साथ शुरुआत करी होगी इस बार समय रैना ने अपने शो की। बट इसका एपिसोड वन जो है वो हम सबके लिए ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। मैं और आप मैक्सिमम लोग इसको देख चुके हैं मैं भी देख चुकी हूँ और बहुत मज़ा आया मुझे इस एपिसोड को देख कर। मुझे एक चीज़ एक आध दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। कुछ लोग के अंदर अपने आप को रोस्ट करने की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है और मुझे लगता है कि ये चीज़ एक ऐसी है जो अगर इंसान सीख ले तो भाई उसको कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा और वो लाइफ में आगे ही बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि आलिया भट्ट अब आपको याद ही उनको कैसे रोस्ट करते थे उनके जनरल नॉलेज को लेकर। बट शो के अंत में जो वो नाची हैं वो जो लास्ट क्लोजिंग सॉन्ग जो था अभी वो गाना जो है वो टॉप नंबर वन गाना चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी सब गाने हो चुके हैं पीछे। तो ऐसी बात है कि इंडिया गॉट लेटेंट देखकर बहुत मज़ा आया मुझे। बट उसमें एक कैरेक्टर जो है वो वहाँ से बहुत फेमस हो गया है और उसके बाद उस जैसे वो फेमस हुआ रिएक्शन भी तुरंत वापस से आ चुका है। एंड दिस रिएक्शन केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका बिकॉज बात हम कर रहे हैं उस किरदार की जिसने डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको इनैक्ट किया था इस शो में। इतना इतनी अच्छी एक्टिंग यार इतनी अच्छी एक्टिंग मतलब मज़ा आ गया देख के। लेकिन उसके बाद इस बंदे को बैन कर दिया गया मतलब इनको अमेरिका जाने को अब नहीं मिलेगा। लेकिन हु वॉन्ट्स टू गो लाइक हर इंसान अमेरिका जाने के लिए नहीं मर रहा भाई। अभी कब समझेंगे ये बात डोनाल्ड ट्रंप क्या पता यहाँ पर ये मुझे बोलने का मुझे ना ब्लॉक कर दें उधर से ये भी हो सकता है। बट चलिए जो भी होगा ये तो हम देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस अगले गाने के साथ।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua वेस्ट में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए।

0: ये बॉलीवुड में जो सो कॉल्ड पैप्स होते हैं, जो हर जगह पहुंच जाते हैं और गॉसिप लेकर आते हैं हमारे लिए, दे आर मोर ह्यूमन देन हाउ मच वी आर. जैसे होता है ना, कभी कोई गॉसिप चल रही होती है ऑफिस में, अब आप उसका पार्ट एंड पार्सल हो या नहीं हो, बट कहीं ना कहीं से मतलब आप उसमें कुछ ऐड करो या नहीं करो, बट आप इन्फॉर्मेशन पूरी रखते हो. तो वैसा ही कुछ पैप्स के साथ भी है. अभी इनको मतलब लिटरली इनको कोई काम नहीं है, इनको यही काम ही है कि मतलब गॉसिप नहीं है तो गॉसिप बना देंगे. अभी बेचारी कृति सैनन अपने करियर के पीक पे चल रही हैं. कॉकटेल 2 रिलीज़ हुआ है, जिसमें उनकी अच्छी बॉडी को उन्होंने मतलब एक इंसान जो ऑलरेडी इतना फिट है उसको और फिट होना पड़ रहा है एक रोल के लिए. मतलब कितना ज़्यादा रिगरस स्केड्यूल के अंदर वो बंदा होगा. मतलब कृति सैनन ऑलरेडी काफ़ी मतलब फिट रही हैं, टॉल हैं, स्लिम हैं, उसके बाद उनको इतना रिगरस डाइट एंड वर्कआउट के थ्रू जाना पड़ा. एंड शी वॉज क्या बोलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट था उनके साथ. कॉकटेल 2 रिलीज़ हुआ, काफ़ी अच्छे काफ़ी क्रिटिक्स ने अच्छी बातें करी उनके कैरेक्टर के बारे में. और एंड आई मुझे लगता है उनके करियर का काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, पीक पे चल रही हैं. तब इनका एक ऑफकोर्स कहीं बॉयफ्रेंड होगा, एक बॉयफ्रेंड है इनका जिसके बारे में भी पैप्स नहीं हमें बताया है. अभी यही हमें बता रहे हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कीर्ति जो हैं वो अपनी स्टोरी डाल रही हैं, इससे ना उनको सेंस हो रहा है, मतलब इन लोग को सेंस हो रहा है, गॉसिप आ रही है कि इनका ब्रेकअप हो गया है. तो इसी वजह से अभी जाके इनके बॉयफ्रेंड से पूछना है कि भाई ब्रेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि इनका रिलेशनशिप के बारे में ही इन्होंने कभी किसी के सामने बात नहीं किया. तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं, जैसे कि अगेन जैसे कि आपको भी होगा कि गॉसिप हर तरफ से मिल रही है और अजम्पशंस हो रहे हैं. बोला किसी और ने कुछ, दूसरे ने कुछ और बना के कहीं और बोल दिया. सेम है भाई, दे आर मोर ह्यूमन देन अस. लाइक दे मतलब इनका तो मैं क्या बोलूँ, ये स्टोरी पढ़ के मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में लोगों को कुछ काम धाम नहीं है इस दुनिया में. वैसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे थैंक यू सो मच, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे आए हैं, मोस्टली अराउंड कि भाई बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में, बहुत अच्छे गाने आप बजा रही हो, आपकी चटपटी बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और साथ में मौसम जो है इसको लेकर काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं. कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलोंग विद मी.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट

वेलकम बैक, मेरा नाम है रक्षा और देश दुनिया की खबर में आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसमें बताना चाहती हूँ कि भाई लोगों ने खबर का ना कुछ और ही बना रखा है। जो खबर आती है उसका मीम बना देते हैं। अब जैसे कि एक बहुत ही मतलब संदिग्ध किस्म का एक प्लॉट क्रिएट किया गया जहाँ पर बहुत फेमस है, आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा सोशल मीडिया पर, जहाँ पर एक लड़की ने अपने फियांसे को धक्का मार दिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। थोड़ा इसमें थोड़ा ट्रायंगल है, समझो तीसरा बंदा है। और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट पर्सन, जिसकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, वो बेचारा तो शादी करने जा रहा था। अब ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा भी आजकल होने लगा है जहाँ पर लोग अगर किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड है, तो सामने वाले बंदे को बिल्कुल प्लैनेट से उठा दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। लेकिन अभी क्या होता है कि ऐसा कोई भी न्यूज़ आ रहा है, जैसे इधर आई थिंक लास्ट 1-2 ईयर्स में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पर लोग अपने लोग इंगेज हो जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं एंड उसके बाद बाहर जाके। ये दूसरा केस है जहाँ पर धक्का मारा गया है माउंटेन से। इससे पहले केस था जहाँ पर ड्रम में एक किसी को अनफॉर्चुनेटली मार के डाल दिया गया था। बट अभी इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। अभी मीम सबसे लेटेस्ट जो मैंने देखा जिसमें थे हम साथ साथ है मूवी का प्लॉट के ऊपर है कि उसमें जो सबसे बड़े भाई का, जिन्होंने मोनिश भेल एंड तबू जो है सबसे पहला कपल है, तीन कपल्स हैं इसमें, जब उनकी शादी होती है तो वो अपने गांव जाते हैं पूरा ख़ानदान को लेकर अपने हनीमून पे। तो उस पर अभी मीम बना रहे हैं लोग कि नाउ वी नो वाई। तो आप समझ रहे हो ये कहाँ तक जा रहा है। और साथ में ये जो केस है जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, मतलब इंसान कैसे इतना दरिंदा इंसान बन सकता है, इट्स वेरी मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ख़राब सी ये बात है। इस केस में भी हर दिन एक नया डायलॉग आ रहा है। पहला था कि मुझे ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही थी इसीलिए मैंने अपने फियांसे को मार डाला। दूसरे दिन आ रहा है जो कि बहुत ही वियर्ड है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या रीज़निंग हो सकती है कि मेरा जो फियांसे था उसके बाल नहीं थे, वो एक विग पहनता था इसीलिए। मतलब अगर किसी बंदे के सर पे बाल नहीं है तो आप उसका मर्डर कर दोगे? कहाँ से ये सच, कहाँ से, मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। और मीम्स तो ऐसी जो बन के आ रही है ना इसके ऊपर, दिस इज़ लाइक रियली पथेटिक। एनीवेज बहुत सारी बातें, प्यारे प्यारे गाने, आपके मैसेजेस जो हैं यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ी देर में आपके लिए मैं स्पोर्ट्स के बारे में जो है न्यूज़ लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
2: Waitoa free-range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy, family night feeling. All the feels, for all the meals.
3: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
4: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or creating beaded animals to painting a Matariki masterpiece, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: So yahan par phir ek aisa case mila hai Auckland mein, jahan par ek restaurant mein workers ko exploit kiya ja raha tha. To exploit ko jaise kiya ja raha tha ki काम करा रहे थे उनसे 60 से 90 आवर्स के और उनको पैसे सीधे उसके आधे दे रहे थे या लेस देन आधे. 30 घंटे के पैसे में 90 घंटे का काम जो है निकलवाया जा रहा था. और ये जो वर्कर्स थे बेसिकली दे वर वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ कोर्स मे बी उनकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी उतनी सही नहीं थी या कहीं ना कहीं उनके वीज़े में कोई प्रॉब्लम थी. सो रूथलेसली एक्सप्लॉयट किया जा रहा था और वो अपनी मजबूरी में एक्सप्लॉयट हुए ही जा रहे थे. लेकिन फाइनली ये जो एक इन्वेस्टिगेशन की गई है और जहाँ पर पकड़े गए ये लोग, एंड आफ्टर दैट दिस ऑकलैंड रेस्टोरेंट हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू पे $400,000 इन रिलेशन टू एक्सप्लॉइटिंग द माइग्रेंट्स. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पार्ट टाइम करते हैं, या आप अगर आज के डेट में एक ऐसी नौकरी में है जहाँ पर आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, प्लीज़ कृपा करके एक्सप्लॉयट ना हो, डरे नहीं, अपनी मजबूरी में और मजबूर ना हो जाएं आगे जाके, अभी से उस पर कुछ एक्शन लेना शुरू करें, बिकॉज अभी ये चीज़ें बहुत हाई रडार पे चल रही हैं. और अगर आप ऐसी किसी चीज़ को खुद भी बढ़ावा दे रहे हो तो कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाओगे. सो ऐसा नहीं करने का, और जो है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, हेल्प लें जहाँ आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ पर हेल्प लें. बट देख के बड़ा बुरा लगता है यार, 30 घंटे की पेमेंट और काम 90 घंटे का. मतलब हॉस्पिटैलिटी में, एक रेस्टोरेंट में, दे सो मच फिजिकल वर्क. कोई समझ लो 90 घंटे पर भी काम कर रहा है, मतलब उसका क्या वर्क लाइफ बैलेंस है. और उसके बाद जब हाथ में पैसे आते हैं तो मात्र 30 घंटे के, वो भी इस महंगाई के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में इन न्यूजीलैंड ये हालत है.

0: क्या मैं महंगाई के बारे में बात कर रही थी, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको नहीं खरीदनी होती है और जनरली महंगी मिलती है, वो अचानक से आप सुपरमार्केट में वॉक इन करोगे और वो सस्ती और डिस्काउंटेड ऑफर में मिल रही होती है, और बिकॉज आपकी आदत है चीज़ों को खरीद के यूज़ नहीं करने का और वेस्ट करने का, तो अब आप इस आदत में थोड़ा सुधार ला चुके हो और इसीलिए आप इस बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, आप छोड़ देते हो खरीदना। एंड देन अगेन नेक्स्ट वीक व्हेन यू वॉक इन, जब आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो वो वापस से बहुत महंगे रेट पर लगी होती है, और फिर आप जो है भाई उस समय अफसोस करते हो कि नहीं यार ये लास्ट वीक जो मैंने फालतू का लॉजिक लगाया था वो नहीं लगाना चाहिए था, खरीद के स्टॉक कर लेना चाहिए था। दिस इज जस्ट लाइक डे टू डे लाइफ फॉर यू मी एंड ऑल ऑफ अस, ग्रास इज़ वो कहते हैं ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, क्योंकि मेरे साथ आजकल सुपरमार्केट शॉपिंग में एग्जैक्टली यही होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो यहाँ पर शेयर करें यार, कौन से ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ है, प्रोडक्ट है, सब्जी है, फ्रूट है, जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, मुझे बताएं 5599 पर।
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: Auckland Airport's international check-in is transforming, so it helps to know your check-in zone. Up to 24 hours before you fly, look up your flight's check-in zone on the Auckland Airport website. Or when you arrive at the airport, just look at the big screens.
6: Bring on the world.
7: Buddy, no!
8: Happy is finding the only mud puddle in the park. Animates, we make happy happen.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
10: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
11: एक जबरदस्त कहानी है।
12: और टाइटल क्या है फिल्म का?
11: वेलकम टू द जंगल।
10: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।

0: Just chill.
1: स्वागत है आपका, वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपका और मेरा सफरनामा जो है वो चलने वाला है अगले 3 घंटे। करेंगे हम बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके साथ बैक टू बैक। बट आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी बात अपने खुद की लाइफ सिचुएशन के बारे में लेकर आई हूँ जो मेरे साथ कल हुई, लेकिन वो सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इस घंटे की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ।

सो फायर अलार्म एक ऐसी चीज है जो ऑकलैंड में कभी भी कहीं पे भी बज जाता है. इट्स फॉर आवर सिक्योरिटी और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट बहुत बहुत वियर टाइमिंग्स पे जो है फायर अलार्म्स जो हैं वो बज जाते हैं. अभी मेरे साथ आज तक का सबसे वियर्डेस्ट हो गया कल, जहाँ पर मैं सुबह सुबह उठकर बहुत मुश्किल से मिले हुए एक हेयर अपॉइंटमेंट को अटेंड करने गई ऑन अ सैटरडे. आप सोचो विंटर में सैटरडे को अपने आप को बेड से पुश करके बाहर निकलना इतनी ठंड में कितना डिफिकल्ट होगा. आप समझ रहे हो, मैं जानती हूँ आप समझ रहे हो, मैं आपको देख नहीं सकती लेकिन मैं फील कर सकती हूँ उस वाइब को. हाँ, तो कुछ ऐसा ही किया मैंने. और जब मैं 9 बजे बिल्कुल ऑन टाइम, टाइम नहीं ऑन टाइम, अपनी टाइम तो मेरा उधर जाके हुआ, ऑन टाइम अपनी कॉफ़ी लेकर, पानी का बॉटल लेकर, सब कुछ कैलकुलेटिवली मैं जो है अपने हेयर ड्रेसर के पास पहुंची. बहुत ही अच्छा फील हो रहा, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था कि भाई आज तो कुछ हेयर कट कराऊंगी. तो क्या हुआ, उससे पहले मुझे एक पर्टिकुलर हेयर कलर कराना था एंड वो पूरा प्रोसेस 1 घंटे का था. तो आधा घंटा पहले कलर लगाने में लगा और उसके बाद 1 घंटे का एक अलार्म सेट. अगर आप हेयर ड्रेसर के पास जाए कलर कराते हो तो यू नो दे विल पुट दिस अलार्म ऑन, ओके, एंड देन वो जब भी वो अलार्म बजेगा तो फिर वो आके आपका वॉश करेंगे एंड देन दे विल गो इनटू द कटिंग और व्हाटएवर इज नेक्स्ट. तो क्या हुआ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सैटरडे की शुरुआत थी. मेरा प्लान था कि ये यहाँ पर 1-2-3 घंटे के बाद आई विल गो, इट वाज सनी, आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू रीड अ बुक ऑन अ बीच, सब मैं पूरा बैठ के उधर प्लान कर रही हूँ. तभी क्या हुआ, जस्ट 15 मिनट पहले जब मेरे बाल को धोने का टाइम आया होगा, फायर अलार्म बज जाता है उस मॉल में. ठीक है, अब आप सोचो मैं उधर चेयर पे बैठी हूँ एप्रन पहन के, बालों में कलर लगा के, कितना वियर्ड हो गया होगा मुझे वहाँ से वॉक करके बाहर जाके खड़े होने में इस ठंडी के मौसम में, जब सब नमूनों, मतलब सबसे बड़ा नमूना तो उधर मैं ही लगूंगी ना. एनीवेज द गुड थिंग अबाउट न्यूजीलैंड है कोई फालतू का आपको ना भाव देता है ना वो घूरता है ना ये सब, ये चीज़ें मुझे यहाँ के बारे में सबसे अच्छी लगती है. बट स्टिल कोई ऐसा नहीं कर रहा था मेरे साथ, लेकिन मुझे खुद बहुत ही अजीब फील हो रहा था. उसके बाद मुझे अलग टेंशन कि भाई अगर अब नहीं वॉश हुआ मेरा बाल, ये जो आग है नहीं बुझी आज, तो क्या होगा. एनीवेज बाय गॉड ग्रेस भगवान ने मेरी बात सुन ली और एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद हम वापस से मॉल में अंदर आ गए. आई वाज लाइक भाई भगवान कभी कभी दम टाइम पर बात सुन लेते हैं. जैसे ही अंदर आए मेरा हेयर ड्रेसर मेरे को रश करके लेके गया बाल को धोने की तरफ. सो व्हेन वी स्टार्टेड वॉशिंग एकदम टूवर्ड्स द एंड, अब इस वॉश वाले प्रोसेस में मैं ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रही थी कुछ कांड होने वाला, बिकॉज द क्वेश्चंस आई वाज आस्किंग माय हेयर ड्रेसर वो, अच्छा आप एक बार वॉश कर दोगे तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं घर जाके भी तो ड्राई कर सकती हूँ, मैं हेयर कट कराने कभी और आ जाऊँगी, ब्ला ब्ला ब्ला ये सब फालतू की चीज़ें मैं बोल रही थी. और क्या हुआ भाई, जो मैंने मैनिफेस्ट किया गाइस वही हुआ. आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, राइट. फिर से फायर अलार्म बजा, बिल्कुल मेरे बाल जब धुल गए बिल्कुल एंड की तरफ, और एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने मैनिफेस्ट किया. इस बार पहले तो सिक्योरिटी गार्ड तो अंदर आके हमें निकाल के उधर से लेके गया बाहर, क्योंकि मेरे बाल पूरे धुले नहीं थे. लेकिन इवेंचुअली मुझे घर वापस आकर अपने बाल को धोना पड़ा. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आई हैव बीन इन, जब फायर अलार्म जो है वो बजा. आपके साथ क्या हुआ और आप कैसा फील कर रहे थे इसके बारे में, अपनी स्टोरी यहाँ शेयर करें 5599.

चलिए बढ़ते हैं शो में और निकलते हैं गानों से, बॉलीवुड से, गॉसिप से, चटपटी बातों से, और थोड़ा रुख मारते हैं किताबों की तरफ। जब भी मैं आती हूँ शो में तो कोई ना कोई बुक रिकमेंडेशंस आप मुझे देते हैं या मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पर इधर मैंने एक बहुत ही अच्छी सी बुक पढ़ी जिसका नाम है, मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं, अभी लाइक थोड़ा बहुत हियर एंड देयर ग्लिम्स मारा है मुझे, लेकिन मुझे पता था एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने मेन पॉइंट्स मैंने उधर से निकाल लिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस किताब का नाम है टेक नथिंग पर्सनली। शुभम कुमार सिंह जो हैं इसके ऑथर हैं, और इसमें बातें की गई हैं कि कैसे आप रिएक्ट करना छोड़ें और अपने आप पे फोकस करें, जो कि एज अ ह्यूमन डिफ़िकल्ट होता है, 24/7 जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कभी ना कभी रिएक्शन आ जाता है, लेकिन जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना, उसी को शायद मैच्योरिटी भी बोलते हैं, बट इतना भी मैच्योर नहीं होना चाहिए कि इंसान मतलब हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा हो। बट दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड मी नेविगेटिंग सर्टेन सिनेरियो। जैसे कि अगर ऐसा कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपसे कोई जेलस है तो आप ये सोचें कि बस शायद आप उससे बेटर हो इन पर्सन, मैं इस थॉट प्रोसेस से इतना सहमत नहीं हूँ, या ऐसी सोच ही क्यों रखना है कि कोई आपसे जेलस है, बट स्टिल अगर ऐसा कभी होता है लाइफ में तो आप ऐसा सोच सकते हैं। बट अगर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता कभी कभी, तो क्या होता है वो वहां से ना आपके लिए हेट्रेड आने लगती है, तो अंडरस्टैंड करें और मूव ऑन करें। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों से हेट करते हैं फॉर नो रीजन, ऐसा कहते हैं कि वो बहुत अनहैप्पी हैं आप इन देमसेल्व्स, मुझे कहीं ना कहीं ये ट्रू लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप कितना भी हार्ड ट्राई करो, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज और कंट्रोल अनदर पर्सन। सिर्फ एक ही चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आप खुद हो और आपका रिएक्शन और अपने आप को। सो आई थिंक और एक बहुत ही सुप्रीम चीज़ जो मुझे इसमें, इस बुक किताब में पढ़ने को मिली, एंड दैट्स अ रिफ्लेक्शन, ओवर थिंकर्स जो हैं वो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाय ओवर थिंकिंग। एंड कहीं ना कहीं मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, ओवर थिंकिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ, हम ऐसा करते हैं। तो अगर आप और मैं ऐसा कर रहे हैं, तो मैं फिर से रिएटरेट करना चाहती हूँ इस शब्द को कि अगर आप और मैं ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने लिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो नहीं करने का, चिलैक्स रहने का, और यहाँ मेरे साथ हम अलॉन्ग करते रहने का।

0: Just chill.
1: भाई कहीं पर मैंने एक मीम पढ़ा और जिसको पढ़ के मुझे अटेंशन देना पड़ गया, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सच्चाई है इन शब्दों में. लुक एट द इकोनॉमी, ऐसा कहा है यहाँ पे. लुक एट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को देखो. दिस इज नॉट द टाइम फॉर रोमांस. भाई मैं क्या बोलूँ, आई मीन कितनी सच्चाई है इन शब्दों में. बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा सच्चाई अभी कहीं पर भी नहीं है न्यूजीलैंड में, जितनी मुझे इन दो सेंटेंसेस में डिकोड करके मिली है. आपका क्या कहना है?

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
4: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए।
9: This is a public savings message from Briscoes. For two cold days only, take half price off. All electric blankets, all duvet inners, all pillows and all sheets. Plus, even more savings store-wide. End Sunday at Briscoes. See online for T's.

So we are looking forward to a very special event in Auckland, New Zealand, जहाँ पर मेरे utmost favorite star जो हैं ये perform करने वाले हैं. कौन है ये, कब आने वाले हैं और कैसे आपके पास मौका है कुछ नहीं, एक डबल पास जीतने का. ये सारे डिटेल्स मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ थोड़ी ही देर में. स्टे ट्यून्ड.

0: सब कुछ आपका ही है।
1: वेलकम ब्लैक, मैं ब्लैक ब्लैक क्यों कर रही हूँ, ओके वेलकम बैक। मेरा नाम है रक्षा, आपके साथ आपके खिदमत में यहाँ पर मैं हाजिर हूँ और आपका और मेरा सफ़रनामा चलने वाला है 6 बजे तक 104.2 FM एज वेल एज़ रोवा ऐप, इन दोनों के माध्यम से आप हमारे साथ जो है ये जुड़े रह सकते हैं। अब मैं ब्लैक ब्लैक इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने ब्लैक पहना है एज़ यूजुअल, बट जस्ट बिफोर कमिंग टू दिस शो मैं सुबह जो है एक ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और उसमें मैंने एक वीडियो देखा रानी मुखर्जी का, जहाँ पर वो अपनी मूवी ब्लैक के बारे में बात कर रही थी कि उनको ब्लैक के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला था और डिसअपॉइंटमेंट उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को हुआ था इस चीज़ को लेके। तो इसी वजह से मैंने ब्लैक जो है बोला, बट मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। और बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि जिस चीज़ के लिए आप सोचते हो आपको अवार्ड और एक और क्या बोलते हैं एकोलेट्स नहीं मिलता, बट कभी कभी कुछ ऐसा काम आप करते हो जो आप सोचते हो कि बड़ा नहीं है लेकिन वो सबके लिए बड़ा होता है और उसके लिए मिल जाता है। दैट्स हाउ अनप्रेडिक्टेबल दिस जर्नी ऑफ लाइफ इज़। एनीवेज ज्ञान तो बहुत पी चुकी हूँ मैं आज सुबह से और आपसे भी ले चुकी हूँ, तो थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं इस घंटे। और आपके लिए मैं डिटेल्स लेकर आने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सर्ट के बारे में इन ऑकलैंड, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड।

0: dance time for two.
1: Dancing far and style.
2: Slow down, boys.

legendary Rahat Fateh Ali Khan is coming to Auckland. This is not a dream. This is not a joke. मैं कोई मजाक मस्ती नहीं कर रही हूँ. ये बिल्कुल reality है. And it's less than a month. He is going to be performing at the Trust Arena on the 25th of July, which is a Saturday. JK Studios, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Production and Shehzada Production. इन सब के वजह से ये जो event है ये होने वाला है. अभी क्या है कि राहत फतेह अली खान इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग. तो आपको पता है टिकट्स की क्या हालत हो सकती है. तो टिकट्स जो हैं ये ऑलरेडी काफ़ी निकल चुके हैं. जो थोड़े बहुत बच्चे हैं अगर आप इनको अपना बनाना चाहते हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो www.dryTickets.com पर. इसके अलावा अगर आप एक रैपिड फायर क्वेश्चन में, क्या बात है, रैपिड फायर से मुझे याद आ जाते हैं करण जौहर और उनका रैपिड फायर हैम्पर. तो यहाँ पर हैम्पर क्या है, डबल पास है आपके लिए. और अगर आप रैपिड फायर में पार्टिसिपेट करते हैं और आप सही आंसर दे पाते हैं उस फायरी सिचुएशन में, तो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं कि आपकी एंट्री जो है एक ड्रॉ में शामिल की जाए, जहाँ पर आपके पास मौका है डबल पास जीतने का. तो जैसे कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन आस्क यू कि कौन सी बॉलीवुड मूवी है जिसमें राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक सॉन्ग तेरे मस्त मस्त दो नैन जो है ये आया था, तो आप उसका आंसर दे सकते हो. सो हमें सुनते रहें, बिकॉज ये रैपिड फायर ऐप के लिए हम कभी भी लेकर आ सकते हैं.

So, बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट के सेक्शन की तरफ, जहां पर इफ यू वांट टू कैच फ्यू बाइट्स, बिट्स एंड कन्वर्सेशंस, बाइट्स नहीं भाई, खाना नहीं मिलेगा पॉडकास्ट सुनते वक्त, बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. आप टाइप कर सकते हैं BF, इसे भेज दें 5599 पर, और यहां पर आपको बहुत सारी चटपटी चीज़ें जो हैं ये सुनने को मिल जाएंगी. इसके अलावा अनफिल्टर्ड में भी एक बहुत ही अच्छा एपिसोड लेकर आए हैं सैंडी एंड रूसबे, इसके बारे में मैं आपसे बातें करूंगी थोड़ी ही देर में. स्टे ट्यून्ड.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम
5: हाय मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्राइंग विंडोज सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है
4: और दैट्स नॉट गुड हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111 रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: As a baby, I was burnt in hot water.
8: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
9: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
10: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
11: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Put your head to Gandhi.
0: Week ka filmi tadka.
13: Welcome to the family.
14: Saturday Bollywood Buzz.
15: Sab kuch aapka hi hai.
16: So, AI ek aisi cheez hai jisko आप पसंद करें या ना करें आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत अच्छी और बुरी चीज़ें भी अराउंड दुनिया में हो रही है बट व्हाट इज़ एआई क्या कर रहा है क्या चेंजेस ला सकता है क्या अपॉर्चुनिटी ला सकता है क्या प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं इसके बारे में इसके अराउंड बहुत कुछ है जो कि आप और मैं नहीं जानते हैं तो यहाँ पर अनफिल्टर्ड ड्राइव के अगले पॉडकास्ट में आपके लिए एआई स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या जो कि सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर हैं ये बात कर रहे हैं सैंडी एंड रुजबे से और बहुत सारी चीज़ों के अराउंड जो है ये हमें अपने नॉलेज से शावर करने वाले हैं तो टाइप करें ड्राइव और इसे भेज दें 5599 पर

न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला। स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मास्टर अशोक को ऑन 021-179-5459। आप डेट सेव कर लीजिए, 8 अगस्त को होने वाला है ये इवेंट। मोर डिटेल्स जो हैं इसके अभी आने वाले हैं, और आप सुनते रहें हम, जहां पर आपके लिए हम ये सारी सूचना जो है वो लेकर आते रहेंगे।

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। 5 बज चुके हैं, आज है संडे, संडे इवनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको मंडे ब्लूज़ बहुत टाइट होता है तो शुरुआत हो चुकी होगी। लेकिन मंडे ब्लूज़ को बीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि ऐसा कुछ कर लो या देख लो जो उससे भी ज़्यादा आपको ब्लूज़ दे सके। ये मेरा जो है क्या बोलते हैं टेक्निक है, बट नहीं ऐसा मैं नहीं चाहती आपके लिए बिल्कुल। मेरा नाम है रक्षा, यहाँ पर आपके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोपहर 12 बजे से। और बहुत सारी बातें हमने करी हैं, देश दुनिया की में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके बारे में हम बात ना करें। अभी कुछ ना कुछ तो बातें उनके बारे में होने वाली हैं। लेकिन यार स्ट्रेट ऑफ हर्मीज जो है हालत ख़राब हो रखी है, मतलब कभी भी खोल दे रहे हैं, कभी भी बंद कर दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में कोई कुछ भी बोल दे रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उसमें वो भी कुछ भी बोल रहे हैं। 370 रुपये की बिरयानी के ऊपर इतना कांड हो गया, बिकॉज भाई क्या है 370, मतलब कैसे कोई ऐसा बोल सकता है। एंड देन उसको ऑन एयर भेज, मतलब डाल दिया गया, ये नहीं कि कट करें, समझाएं, और उसके बाद आके अपोलॉजी कर रहे हैं। तो आजकल थोड़ा सा एक ट्रेंड बन गया है जहाँ पर लोग कुछ भी मेंशन बोल रहे हैं और फिर आके अपोलोजाइज कर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो ट्रेंड है ये सही नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपको भाई ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह की बातों को प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया पर? अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कैमरा फेसिंग है और जोक्स लेकर आ रहे हो, क्या आपको लगता है ये जो अपोलॉजी वाला जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक है? क्या आपकी क्या सोच है ये मैं जानना चाहती हूँ, और फिर आप और मैं यहाँ पे करेंगे बातें इसके अराउंड। तो मुझे बताएं 5599 पर।

भाई नया रूमर लेकर आए हैं पैप्स। अब ये रूमर है कि रियलिटी ये नहीं पता कि हार्दिक पांड्या जो है क्या इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है अपनी करेंट गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ। नाउ ये ऐसा र्यूमर इसलिए बाहर आया है बिकॉज इनकी एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे आ गई है जहाँ पर माहिका जो है इन्होंने सिंदूर लगाया हुआ और कुछ रेड दुपट्टा पहना हुआ है विथ कोई एल्डरली विमेन भी इस फोटो में अलॉन्ग विथ हार्दिक पांड्या। अब मेरा इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, इनसाइट है कि मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या जैसे इंसान को कुछ सीक्रेटली करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो ऐसा करते तो फिर बात ही क्या हो जाती। आई मीन ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको जो सीक्रेट में करना चाहिए वो भी सीक्रेट में नहीं हो रहा है। तो आपका क्या कहना है मेरे साथ यहाँ जरूर शेयर करें 5599 पर।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad, ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur Aamche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, rides aur 5-star accommodation. All for just 8

यार कुछ गानों का ना नशा हो जाता है और वो आपके दिमाग में चलता रहता है, बट अभी इस बार तो मुझे बहुत ही गंदे गाने का मैं क्या बोलूँ, चस्का चढ़ गया है. इट्स दैट सॉन्ग फ्रॉम इंडिया गॉट लेट इन लाइक जो फर्स्ट एपिसोड है, ओए होए क्या सीन है, वो दिमाग में मुझे पूरी लिरिक्स भी नहीं आती है लेकिन वही मेरे दिमाग में ना प्ले होता जा रहा है. लाइक इट्स लाइक यू नो आई थिंक आई शुड गो अहेड एंड लिसन टू समथिंग बेटर. और आपके लिए भी प्यारे प्यारे गाने और प्यारी प्यारी बातें मैं यहाँ पर लेकर

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। अभी ऐसे ही लास्ट वीक मुझे कुछ ऐसा देखने का मन कर रहा था जो मैं पहले देख चुकी हूँ, एंड सम लाइक हिंदी बॉलीवुड मूवी 90s, जिसमें कोई मेरा फेवरेट एक्टर हो और मुझे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और मज़ेदार से गाने हो। तो ऐसा करते वक्त मैंने ना ऐसे सोल्जर मूवी जो है ये लगा दी। टुक मी बैक टू दोज डेज जब मैं न्यूजीलैंड में नहीं थी, आप न्यूजीलैंड में नहीं होंगे, बट इस मूवी का बहुत सारा पार्ट न्यूजीलैंड में शूट हुआ। और ये मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया कि जो इसका टाइटल ट्रैक है उसमें प्रीति जिंटा जो है उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, बीनी पहनी हुई है, ब्लैक कैप्स का जो सिंबल है ऊपर बना हुआ है। एंड लाइक आई डोंट बिलीव, लाइक इसको जब मैंने कभी देखा होगा उस टाइम पर जब हम स्कूल में थे, मैंने कभी देखा ही नहीं होगा उस पर क्या लिखा है। एंड नाउ आई डू। एंड इफ़ यू लुक एट दी बैकग्राउंड, इस मूवी की बहुत सारी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुई है। लॉट ऑफ शॉट्स इफ़ यू सी आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, जहाँ पर क्वींसटाउन एंड ऑल दिखाया गया है उस टाइम पर। तो जैसे RHDDM का शूट हुआ था न्यूजीलैंड में, वो हम जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई सोल्जर मूवी का भी बहुत पार्ट जो है वो न्यूजीलैंड में शॉट हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा देख के, लाइक टुक मी डाउन दैट मेमोरी लेन। एंड प्रीति जिंटा क्या खूबसूरती है भाई, मतलब इतना नेचुरल कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड आई थिंक शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक माई वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स। आपका क्या कहना है?

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बिफोर यू कैन वोट यू नीड टू बी एनरोल्ड। We're making it easy with electoral commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
2: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions

थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए। मेरी और आपकी जो मुलाकात है वो होगी बहुत ही जल्द, अगले वीकेंड भी आपके लिए मैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक शो लेकर आने वाली हूँ। तब तक जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ संडे नाइट प्रोग्राम लेकर और 12 तक हमारा साथ रहेगा. प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आएंगे एक एक करके. बस आपको हमारा साथ देना है. बैक टू बैक सॉन्ग्स आज बहुत सुनाने जा रहा हूँ आपको. मेलोडियस गाने रहेंगे, प्यारे प्यारे गाने एक एक करके. बेस्ट बेहतरीन बेजोड़ गाने होते हैं बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. तो आपको पता है सभी के सभी गाने काफ़ी बड़े बड़े हिट गाने होंगे, चार्ट बस्टर्स होंगे और काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स होंगे जो आपके लिए हम लेकर आएंगे. देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए दिल से संडे नाइट मेलोडीज.
0: दिल से दिल से दिल तक.
1: वेलकम एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग. संडे नाइट मेलोडीज में आपका स्वागत है. दिल से मैं आपके लिए ऐसे गाने जो एक दिल से निकलती है दूसरे दिल तक पहुंचती है, मतलब फ्रॉम माय हार्ट टू योर्स, ऐसे गाने जो मैं दिल से चुनता हूं आपके लिए और ऐसे गाने जो आप दिल से सुनते हैं, मतलब जो बहुत सेंचुअस है, रोमांटिक है. और इन दोनों गाने का, इन गानों का इनफैक्ट दिल से कनेक्शन होता है. तो स्वागत है आपका, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे. वेरी गुड इवनिंग एवरी वन. अभी आप अगर ट्रैवलिंग से लौट रहे हैं, रास्ते पर है और ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर कर घर पर जा रहे हैं, तो स्वागत है आपका. ट्रैफिक थोड़ा बहुत हो जाता है जब आप ओकलैंड रिटर्न हो रहे होते हो. थोड़ा बहुत ट्रैफिक आई थिंक फ्रॉम बॉम्बे ऑनवर्ड्स से शुरू होने लगता है. अगर ऐसा ही कुछ हाल है तो आपका स्वागत है और आप हमें सुनते रहो, क्योंकि यहाँ से एंटरटेनमेंट आप तक हम पहुँचाएंगे.

काफी रोमांटिक गाने हैं हमारे पास आज आपको सुनाने के लिए. आप हमें बताएं कि इन दिनों आपका सबसे फेवरेट रोमांटिक गाना कौन सा है, तो वो भी हम देखना चाहेंगे कि लोगों की पसंद क्या है और कौन से गाने आपको ज़्यादा अच्छा लगता है इन दिनों, या फिर ऐसे कोई पुराना गाना भी हो जो 2000 या 2001 2 या 3 या 4 5 के गाने. आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. आज 28 जून है, संडे है, और संडे नाइट मेलोडीज़ लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए.

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hit, Sunday Night Melodies, जारी है. आपके सारे favorite songs जो है, एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा. 6 घंटे की shift है, तो इतने सारे गाने इसमें होंगे. I'm sure इसमें से काफी ऐसे गाने होंगे जो आपके personal favorites हैं, जो आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप जिसकी फरमाइश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास. तो हमें पता है हमारे लिसनर्स को किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं, और इनफैक्ट हम तो वैसे भी आपके लिए प्ले करता है बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. सारे हिट और हॉट गाने, पॉपुलर गाने आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मा'स फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मा'स इडली और डोसा बैटर। अम्मा'स फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
4: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai. Wow.
5: Dil se. Dil se. Dil tak. Aapka moment. Krish ka magic. Only on hum.
7: काफ़ी तैयारियां हो रही है कल के काम के लिए, वापस लौटना है और लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब लॉन्ग वीकेंड आए। आई थिंक लॉन्ग वीकेंड एक 10 जुलाई को आने को है, लेकिन उससे पहले तो अभी काम करते रहो। कल वर्किंग डे है, तो वर्किंग वीक है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुनते रहो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए हम लेकर आएंगे, टिप्स कुछ है जो वर्क रेडी आपको बना सकता है, वो भी ढूंढ कर आपके लिए हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। आपके लिए जारी है ऑन योर नंबर वन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, संडे नाइट मेलोडीज़, और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है, अरे गुटों में स्वैग है। Been trying to hit fly boy, yeah, I'm a life up in high boy, yeah.

0: अरे गुट में स्वैग है
1: You're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. सुनते रहो आपका number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, जो आपके लिए एक एक ऐसे गाने लेकर आते हैं जो आपको बेहद पसंद है और आपके compliments मिल रहे हैं. Thank you so much. कुछ science related information भी आपके साथ share करेंगे. एक AI designed universal coronavirus vaccine को तैयार किया गया है जो काफ़ी promising sound कर रहा है. इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि अब AI का कमाल देखो. वैसे तो AI काफ़ी सेक्टर्स में बहुत कमाल या धमाल मचा रही है, काम की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा रही है, एक्यूरेसी भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है. तो अभी कोरोना वायरस वैक्सीन भी बना रही है, यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन, जिसके बारे में अगले घंटे पर मैं आपको जानकारी दूंगा.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: Today is 28th June, तो इससे पहले कि ये दिन ख़त्म हो जाए और मैं भूल जाऊँ आपको याद कर लेता हूँ. I will take this opportunity. जितने भी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन आई एम श्योर वीकेंड में हुआ होगा, घर पर फैमिलीज भी आए हुए होंगे, वेडिंग एनिवर्सरी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आई एम श्योर सेलिब्रेशन भी आपने कुछ आयोजित किया होगा घर पर. तो स्वागत है आपका. टीम हम की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, बेस्ट विशेज, मुबारकबाद ही आपको देना चाहेंगे. और अगर कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है अभी, जो कि होना चाहिए, दैट्स आवर बेस्ट विशेज ऑल द टाइम. तो अगर आप वो इफ़ यू गॉट अ रीज़न टू सेलिब्रेट, उसमें भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. कृष का साथ है.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
2: Ek zabardast kahani hai.
3: Aur title kya hai film ka?
2: Welcome to the Jungle.
1: Welcome to the Jungle now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC. Welcome, welcome, welcome.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स संडे नाइट मेलोडीज में आगे बढ़ते हुए और भी प्यारे गाने आपके लिए याद रहे। बस थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने एक AI डिजाइन यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन को डिवेलप किया है, विच इज शोइंग प्रॉमिस। तो इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: Alright, the information that you've been waiting for, AI-designed universal coronavirus vaccine. International Medical Research ने 5th June of this year published किया है ये report, जहाँ पर scientists ने infect test किया है an AI-designed coronavirus vaccine in humans. और early trials ने कहा कि ये काफी safe और well-tolerated vaccine है, जो ह्यूमंस पर इस्तेमाल अभी ट्रायल के दौरान हो सका है. वैक्सीन ने काफ़ी इनकरेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है और रिसर्चर्स का मानना है कि इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मल्टीपल कोरोना वायरस स्ट्रेन्स. और ये स्टडी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहा है इन वैक्सीन डेवलपमेंट, स्पेशली थ्रू द यूज़ ऑफ AI. दैट्स एन अमेजिंग रिजल्ट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी

इनफैक्ट इस घंटे पर टाइम है तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ, टाइनी टेलीस्कोप वाला जो न्यूज़ हमारे पास है। जापान में 6 जून ऑफ दिस ईयर पब्लिश किया गया है रिसर्चर्स द्वारा एक ऐसा डिज़ाइन जो एक कॉम्पैक्ट लूना एक्सरे टेलीस्कोप है, और ये इंस्ट्रूमेंट अब क्रिएट कर सकता है कम्प्लीट केमिकल मैप ऑफ द मून। साइंटिस्ट ने कहा है कि ये लूना एवोल्यूशन का डिटेल्स भी रिवील करेंगे, और सिमुलेशंस ने ये इंडिकेट किया है कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसका रहा है डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज, और ये काफ़ी फ्यूचर मून मिशंस को आगे चलकर सहायता प्रदान कर सकती है। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट टाइनी टेलीस्कोप अब इतना बड़ा काम कर दिखाएगा आने वाले दिनों में, इनफैक्ट अभी से ही करने लगा है जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Dil se. Dil se. Dil tak. Aapka moment. Krishka Magic, only on Hum.
6: संडे नाइट मेलोडीज जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। वेलकम बैक एवरीवन। राहत दिलाने वाले गाने मैं लेकर आ रहा हूँ, सुकून देने वाले गाने। चिल आप कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, आप करते रहो संडे नाइट। इट इज़ लाइक दैट, रिजुविनेट और रिचार्ज होने का पूरा मौका होना चाहिए ताकि यू आर रेडी फॉर योर बिजी वीक अहेड। वर्क वीक होने जा रहा है तो काम तो वापस जाना ही है। आप तैयारी कर रहे हैं वापस लौटने के लिए, मील प्रेप हो रहा है घर पर, या कपड़े वगैरह आप आयन कर पहले से ही रख लेते हैं पूरे हफ्ते का, या काफ़ी बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके स्कूल के लिए, तो फिर आप करते रहो। संडे नाइट ऐसा ही एक रात होती है जिसमें प्रिपरेशंस बहुत होते हैं और यहाँ से एंटरटेनमेंट आपका साथ देते हुए मैं क्रिश आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्रिश का साथ है, वेलकम टू द शो एवरीवन।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits Krish के साथ है. मैंने आपसे कहा था कि हम आपको कुछ Sunday tips देंगे to set yourself up for a smoother work week. किस तरह से आप अपने week को और भी बेहतर बना सकते हैं और भी stress-free बना सकते हैं. In fact, कम stress होता है अगर तैयारी हो तो इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी. इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो एक-एक करके आपको वो तमाम गाने और प्यारे information जो है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है वो लेकर आएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा. संडे नाइट मेलोडीज जारी है. 28 जून आज है. आप सभी का खास स्वागत है.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Don't miss it. Get 2 months free when you sign up to NIB Everyday Health Cover for dental, physio, GP and more. Offer extended to 30 June 2026. Credit applies after paying for your first month. Eligibility criteria and T's and C's apply. Visit nib.co.nz to find out more.
7: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे संडे नाइट मेलोडीज में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक तो पहला टिप ये है कि आप अपना जो वीक है वो 15 मिनट्स के अंदर प्लान कर ले, अपना कैलेंडर चेक कर ले, मीटिंग्स है, डेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, और उसमें से फिर आप अपना टॉप 3 प्रायोरिटीज़ फॉर द वीक पिक करें, क्योंकि आपको मंडे स्टार्ट करना है ऑन अ वेरी स्मूथ नोट। आप लॉन्ग अनक्लियर टू डू लिस्ट के साथ काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, स्ट्रेस होगा, पैनिक होगा, तो प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है और अपना प्लान वीक को प्लान करना ज़रूरी है, और वो ये इनफैक्ट 15 मिनट के अंदर हो ही सकता है। प्रिपेयर मंडे ऑन संडे नाइट, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

के लिए जो डिसीजंस आप लेंगे, जो मंडे के लिए आपने रखा था, अगर आप पहले से वो आप बना लेते हैं, पहले से अगर आप वो टैकल कर लेते हैं, तो मंडे मॉर्निंग स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है आपके लिए. इसके बाद में मैं आपसे शेयर करूंगा डू अ ब्रेन डंप, यहाँ पर लिखा है ये क्या है, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी. कृष का साथ है, संडे नाइट मेलोडीज आपके लिए जारी है.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
2: And who Tejal Vyas?
1: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
2: Exchange Offer.
3: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. आगे बढ़ते हुए और भी संडे टिप्स हम लेकर आए हैं आपके लिए. लास्ट वीक का काम रिव्यू करते हैं. पूछ आप अपने आप को पूछ सकते हैं कि what went well.

well, what wasted my time. क्या आप डिफरेंटली कर सकते थे, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए. ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एफिशिएंट इफ़ेक्टिव आप होना चाहते हैं तो अपने लिए एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज रखना ज़रूरी है. डोंट टर्न संडे इनटू अ वर्क डे. जितना टाइम हो सके रिलैक्सिंग में आप बिताएं विदाउट गिल्ट. अवॉइड चेकिंग ईमेल्स कॉन्स्टेंटली क्योंकि रेस्ट इज़ पार्ट ऑफ बींग प्रोडक्टिव. अगर आप रेस्ट लेते हैं तो आप प्रोडक्टिव होंगे आने वाले हफ्ते जो वर्क वीक में. मेरा आई थिंक मुझे भी आदत है कि मैं काम संडे को करता हूँ और फील करता हूँ कि पूरा वीक थकावट से गुजरती है. लेकिन अगर आप संडे निकाल कर कंप्लीट रेस्ट करते हैं, इट डज़ मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो आप ये ज़रूर ट्राई करें. मैं कृष्ण.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स दिल से दिल तक आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
2: वेलकम बैक एवरी वन यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स संडे नाइट मेलोडीज जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और रोमांटिक सॉन्ग्स और मेलोडियस सॉन्ग्स तो आपके लिए एक एक करके हम पेश कर रहे हैं जो आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ हमें मिल रहा है और ऐसे ही आप अपना साथ हमें देते रहिएगा क्योंकि 12 तक आपको हमारा साथ देना है एंड देट इज़ 3 मोर आवर्स टू गो और ऐसे ही मुझे आपके साथ की ज़रूरत है इंटरेक्शन आपके साथ होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपसे बातें होती है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूँ गाने का लिस्ट मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ और बदल रहा हूँ आपके लिए इस सोच में कि कैसा गाना आपको अच्छा लगेगा इस टाइम पे और कौन सा गाना आपको बेहद पसंद आएगा वो सभी चीज़ों के एक्सरसाइज के बाद जो गाने आप सुनते हैं वो आपके लिए हम पेश करते हैं जो आपको पसंद आ रहा है मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ मिडनाइट तक रहेगा वेलकम बैक एवरीवन

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं कृषाव के साथ दे रहा हूँ. हम podcast के बारे में जितना बातें करें उतना ही कम है interesting information इनके साथ होता है. Unfiltered Drive में recently रिज़बे और सैंडी ने बातें किया निवेदिता विज के साथ में, discussing thalassemia and its impact on the South Asian community. तो podcast में ये इन बातों पर गौर फरमाया गया है और आप ज़रूर सुने. One simple screening family का future बदल सकता है, तो आप last minute तक इंतज़ार ना करें, too late तक इंतज़ार ना करें. साइलेंट कैरियर्स एक हिडन जेनेटिक थ्रेट होता है जो साउथ एशियन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बन चुका है. क्यों अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूरी है? वाइटल कन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए. और क्यों साउथ एशियंस हायर रिस्क होते हैं फॉर थैलेसीमिया, और क्या आपको जानना ज़रूरी है? निवेदिता शर्मा विज के साथ ज़रूर जो बातें हुई है ये आप सुने. ये एक सीजन्ड हेल्थ प्रोफेशनल है, अ मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस पायनियरिंग सेल्फ केयर. और साथ ही में अगर और जानकारी के लिए आप ड्राइव टेक्स्ट करते हैं 5599 पर, तो फुल ऑडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगा. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये सुनने के लिए आप BF टेक्स्ट करें 5599 पर और कैचअप कीजिए अपने आप को या अपने साथ ऑन पॉडकास्ट जो हम पर आपके लिए जारी है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करता है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं. एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलैंड आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे, इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है. बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है. 25th of July को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने जा रहा है. dryTickets.com से आप टिकट्स ले सकते हैं. डबल पास जीतना है तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन हमारे साथ ही आपसे जब भी पूछेंगे आपको तुरंत कॉल कर या टेक्स्ट कर जवाब देना है. ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका होगा. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को देखने के लिए आप टिकट जरूर ले. 25th of July को ये शो होने जा रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है, 8 अगस्त को होगा. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते हैं.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरीवन, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज. एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहेगा ना मिडनाइट तक, 2 आवर्स तक ये और हमारा साथ आपके साथ रहेगा. एंड थैंक यू सो मच कि आपका साथ हमें मिल रहा है. वैसे जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं आपको भी शामिल करेंगे इसी घंटे पर. रोवर लिसनर्स आपको भी याद करेंगे, आपके लिए एक स्पेशल गाना भी हम लेकर आए हैं, स्पेशल डेडिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं. बस आप हमारा साथ देते रहे. वेलकम बैक एवरीवन. जैसे जैसे रात और भी आगे बढ़ती जा रही है, गाने और भी सेंसुअस और भी प्यारे और भी मेलोडियस आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. अभी मैं आपसे जो information share कर रहा था कि किसे किस तरह से आप अपना work week को और भी manageable बना सकते हैं, Sunday tips मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. तो यहाँ पर कहा गया है कि fix your sleep schedule, avoid staying up much later than your weekday bedtime, क्योंकि Sunday को proper sleep होना ज़रूरी है. Get morning sunlight if possible, और a good Sunday night sleep Monday को और भी आसान बना सकता है. इनफैक्ट द होल वीक काफ़ी आसानी से गुजर सकता है अगर आप अपना proper sleep लेकर fully recharged और rejuvenated हो जाए, तो पूरा हफ्ता अच्छी तरह से बीत सकता है. मैं क्रिश आपके साथ दे

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. कुछ Bollywood news भी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं जो आपके साथ हम share करते हैं. Thank you so much for your great company, क्योंकि आपका साथ हमें मिलता है तो इसलिए हम और भी encouraged होते हैं आपको ऐसे गाने सुनाने के लिए. Jacqueline Fernandez अभी एक horror film में नजर आएंगी. Jacqueline Fernandez star करेंगी है full fledged first horror film. Production होगा late June में. और प्रोजेक्ट एक मेजर जॉनरा शिफ्ट होगा इन करियर. और हॉरर कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द इंडियन सिनेमाज फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉनरस. कहा गया है कि ये जो फिल्म है बहुत ही जल्दी इसके डिटेल्स रिलीज किया जाएगा. इम्तियाज अलीज मैं वापस आऊँगा कंटिन्यूस स्टडी रन, इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट में रिलीज जा रही है.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. इम्तियाज अलीज मैं वापस आऊंगा. ये फिल्म बहुत ही स्टेडली परफॉर्म कर रहा है. 24 करोड़ आफ्टर 10 डेज इस मूवी ने कमाया है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को मिल रहा है, जिससे कलेक्शंस बढ़ रही है. और ऑडियंस ने प्रेज़ किया इस फिल्म को फॉर इट्स इमोशनल स्टोरी टेलिंग. और ये मोस्ट डिस्कस्ड रिलीजेस ऑफ द मंथ में से एक फिल्म है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट मेलोडी सुनते रहो.

Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट संडे नाइट मेलोडीज में जितने भी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे ऑनलाइन लिसनर्स आपको भी शामिल करते हैं रोवर पर जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं रोवर के जरिए आप बहुत प्राइजेस भी जीत पाएंगे बहुत फ़ायदे में रहते हैं म्यूज़िक प्लस स्टेशंस का भी मज़ा ले पाएंगे 80s के गाने चढ़दी कला पंजाबी हिट्स आप सुनना चाहते हैं फिजी कीर्तन संग्रह सुनना चाहते हैं ये सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ संडे नाइट मेलोडीज जारी है

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits. आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
5: वेलकम एवरीवन, दिस इज आवर फाइनल आवर ऑफ द शिफ्ट। और बहुत ही लंबा प्यारा शिफ्ट आपके साथ होता है, उतना ही ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। इस घंटे पर भी आप हमारा साथ ज़रूर देना। आई एम श्योर काफ़ी लोग अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे होंगे या बस आराम करने के लिए आप आ चुके हैं और हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका संडे नाइट मेलोडीज़ को आगे बढ़ाते हुए। और भी प्यारे गाने आपके नाम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, 12 तक हमारा साथ रहेगा।

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आएंगे. संडे टिप्स भी मैं आपको बता रहा हूँ और उसमें भी कुछ जानकारी हमारे पास रह गया है जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी बिफोर द शिफ्ट इज़ ओवर. अभी तो एक और घंटा आपके साथ रह गया है. प्रिपेयर योर फूड, ये भी ज़रूरी है. वेजिटेबल्स कट कर ले, बेसिक मील बैच बनाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट आइटम्स को तैयार कर ले और हेल्थी स्नैक्स रेडी कर ले, क्योंकि पूरा हफ्ता अगर आपका तैयारी अच्छा हो तो लास्ट मिनट स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा और प्रिपेयर्ड होने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है.

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with

संडे टिप्स को और भी आगे बढ़ाते हुए, सेट अ मंडे मॉर्निंग इजी विन, ये भी ज़रूरी है। एक स्मॉल टास्क आप करें जो आप कंप्लीट कर सकते हैं क्विकली, जैसे आप एक ईमेल का रिप्लाई या कोई सिंपल रिपोर्ट आपको फिनिश करना है, अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करना है, एक क्विक विन मोमेंटम को बिल्ड करता है और आपको आपका सीन सेट करता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये आप ज़रूर करें एंड आई थिंक इट डज वर्क, इट्स सच अ गुड टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते रहेंगे कुछ ही देर तक, और मैं क्रिश आपके साथ दूंगा, आपको बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहना है. संडे टिप्स के बारे में बातें हो रही है, विच मेक्स योर वर्किंग वीक वेरी स्मूथ एंड मैनेजेबल. एक वीकली थीम बना लें इंस्टेड ऑफ ओनली गोल्स. आप ईच वीक को एक फोकस दें, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग वीक, डीप वर्क वीक, हेल्थ वीक या नेटवर्किंग वीक. तो इस तरह से आप उस थीम के अराउंड काम कर पाएंगे. इम्पोर्टेंट टास्क अर्ली, जैसे कोई अब जब आपका एनर्जी हाईएस्ट होता है एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, तो मंडे टू ट्यूसडे आप डिफिकल्ट वर्क को डेडिकेट कर सकते हैं, वेंसडे को कोलैबोरेशन, थर्सडे फ्राइडे को फिनिशिंग और प्लानिंग. तो इस तरह से आप अपना जो एनर्जी है ऐसे टास्क में यूज़ कर सकते हैं जो डिफ़िकल्ट है करना. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, जारी है आपके लिए संडे नाइट मेलोडीज़.

चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

संडे नाइट मेलोडीज यहीं पर खत्म होती है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात होती है कल मिड 8 to midnight. हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए नाइट कैफे. अपना बहुत ही ख्याल रखें. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे एंड वीक. कल रात को मुलाकात होती है. गुड नाइट एवरीवन.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: और दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
2: Playing Bollywood's biggest hits.

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: अपने जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम.
3: Night flight on हम.
4: ये

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पॉइंट सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Jen didn't think she needed a DVS system.
6: Oh, I've got insulation in that.
5: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
6: Ah, yeah.
5: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
7: Don't miss it. Get 2 months free when you sign up to NIB Everyday Health Cover for dental, physio, GP and more. Offer extended to 30 June 2026. Credit applies after paying for your first month. Eligibility criteria and T's and C's apply. Visit nib.co.nz to find out more.
0: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Concerns are being raised about ACT's proposed welfare policy. It wants to tighten medical assessments and introduce spending controls on some job seeker payments. But Child Action Poverty Group's Isaac Gunson says people face a lot of barriers.
9: Their physical or their mental health, disability, childcare responsibilities, nowhere firm to work or call home, and inadequate income.
8: Labor's proposal to strengthen the trades has been given the thumbs up. It wants to restore the apprenticeship boost scheme. Greg Wallace from Master Plumbers says it was successful in the past.
10: I think it's a great plan. When we had the boost scheme originally, we had really good growth, and in some construction sectors that was up by 30%.
8: Communities cut off by a bridge washout in Wairarapa are waiting for answers about when access will be restored. The Tūranganui Bridge on Lake Ferry Road has been wiped out by flooding on its northern side. The council says initial assessments indicate repairs could take until midweek. A warning that the heatwave gripping Europe is becoming fatal. WHO boss Tedros Ghebreyesus says more than 1,300 excess deaths have been recorded since June 21st. Linked to high temperatures. In sport, England cricket captain Ben Stokes has sensationally announced his international retirement midway through the decisive third test against the Black Caps at Trent Bridge.
11: To be honest, like, might sound quite selfish, but this decision, it is generally the best thing for me right now.
8: England's been set 373 to win and a 103 for 4 at stumps on day 4. And in motorsport with Mag and Turbo, home of the Free Steelies with Muds, ninth place for Liam Lawson as George Russell won the F1 race in Austria for Mercedes.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: Almost 10 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 6 degrees rahega. Mausam aaj saaf aur suhana rahega. Sunrise 7:34 am par aur sunset aaj sham 5:15 baje hoga.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
12: 3 minutes हो रहे हैं 6:00. नमस्कार, a very good morning. स्वागत है आपका. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. आज मंडे है, 29th of June. आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आगे हैं वादे अनुसार एक बार फिर आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो. आपको भी a very good morning.
3: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. आप सभी को भी आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से.
12: होपफुली वीकेंड आपका अच्छा रहा होगा और अब एक नए हफ्ते की शुरुआत और द फाइनल वीक ऑफ दिस मंथ ये हम शुरू करने जा रहे हैं.
3: बिल्कुल, अभी बस मेरे ख्याल से 3 दिन और फिर उसके बाद तो हम अगला महीना यानी कि जुलाई जो है इसकी शुरुआत करेंगे. एंड विद अ न्यू मंथ, द 7th मंथ फॉर द ईयर, इतनी जल्दी जल्दी ये साल भी जा रहा है. it's like in it's in a competition with last year, I think. क्योंकि last year भी काफी रफ्तार गया था ना.
12: अब देखना है विंटर का पहला महीना जो है ये ख़त्म होने को है और इस वीक अगर देखें तो मौसम के नज़रिए से शुरुआत अच्छी हो रही है. एज़ वी कम टू द क्लोज ऑफ द वीक शायद तब जाकर कुछ बारिश हो, लेकिन मौसम तो कभी भी बदल सकता है. लेकिन आज के लिए साफ मौसम का अनुमान है, लेकिन काफ़ी ठंड रहेगी. आज का है सिर्फ 15 डिग्रीज होगा.
3: सिर्फ 15 डिग्रीज, इट्स लाइक द सेम थिंग. भाई विंटर है तो विंटर का पूरा मजा भी लीजिए, जिस किसी भी हिसाब से आप विंटर एंजॉय करते हैं. बट लुक आफ्टर योरसेल्फ एज वेल, बिकॉज विंटर का मतलब सिर्फ सर्दी नहीं होती जहां पर आप ठंडे मौसम का मजा उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी होती है जो विंटर के दौरान आ जाती है और बहुत परेशान करती है. सो एज आई सेड, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस एज वेल.
12: तो आज प्रोग्राम में क्या कुछ है इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां बारी बारी से हम आपको देते रहेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद आवर सनी साइड अप स्टोरी.

0: सनी साइड अप।
1: आज का हमारा जो सनी साइड अप स्टोरी है ये एक बिजनेसमैन और एक पदयात्री के बारे में है, यानी पेडेस्ट्रियन के बारे में। ये पेडेस्ट्रियन जो है उनके पैर की सर्जरी हुई थी और वन इवनिंग वो वापस अपने घर जा रहा था सिटी सेंटर से। इनफैक्ट सिटी सेंटर में ही रहता था तो पास में ही उसका घर था। तो देवे बेसिकली स्ट्रगलिंग क्रचेस पर थे, जा रहे थे, जिस समय पर गंभीर बारिश जो है ये शुरू हो गई। और या तो वो अपने आप को संभाल सकते थे या फिर कहीं जाकर या किसी के साथ अम्ब्रेला में ही जा सकते थे बगैर भीगे, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे भीगते हुए वो जा रहे थे और उसी समय पर ये बिजनेसमैन जो है उनके पास से गुजर रहा था। एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये जो पेडेस्ट्रियन है ये काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो है अपनी गाड़ी से उतरे, अपनी छतरी लेकर, और ना केवल वो अपनी छतरी के नीचे उनको लेकर गए बट ही वेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरफ वो जा रहे थे उसके ठीक ऑपोजिट साइड ये पेडेस्ट्रियन जो है ये जा रहे थे। ही डिलेड हिज मीटिंग और लेकर गए उनको उनके घर तक पहुंचाया। घर तक पहुंचा कर जाकर तब उन्होंने अपना मीटिंग जो है ये जाकर कंटिन्यू किया, और जिसके बाद जाकर इस पेडेस्ट्रियन ने रेडिट पर अपनी स्टोरी जो है ये शेयर की और कहा कि रियल केयर इजंट अबाउट सेविंग द होल वर्ल्ड, समटाइम इट्स जस्ट विलिंग टू रूइन योर ओन एक्सपेंसिव सूट सो अ पर्सन ऑन क्रचेस डजंट हैव टू फ्रीज।
2: देयर इज सच अ स्वीट मैसेज एज वेल। एंड कम टू थिंक अबाउट द पॉइंट कि आजकल यार अपने अपॉइंटमेंट्स, अपना प्लान कोई किसी के लिए नहीं चेंज करता। व्हाटएवर इज फिक्स्ड, व्हाटएवर दे यू नो ऑलरेडी, व्हाटएवर दे ऑलरेडी डूइंग, उसे कोई बदलने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं है। बट हियर यू सी अ पर्सन जिसका इस दूसरे शख्स से कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशनशिप बींग शेयर्ड, लेकिन वो उनकी मदद कर रहे हैं और मदद कर रहे टू एन एक्सटेंट जहाँ पर वो अपना पूरा का पूरा प्लान चेंज कर रहे हैं। And he is showing, or he is doing it with full love, not just out of some expectation, you know.
1: और फिर वो भी है कि appreciation किस तरह से, किसी को मालूम नहीं कि वो कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ खास।
2: Yeah, they need to show the world, ना कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया।
1: जी।
2: So that is such me a very beautiful story to start the show with, and इस beautiful सी कहानी से एक सीख भी मिलती है। और उम्मीद है ये सीख हम सबको हमेशा याद रहे।
1: थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे।

0: हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's eeca.govt.nz.
2: Club Plus deals are on this week at New World North Island. Get Pam's Grated Cheese Select Size, $7.99 each. Or Sea Lord Hokey Family Pack, gluten-free or fish burgers Select Size, $6.90 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it. And I wanted my voice to be heard.
4: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
5: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
7: Better.
6: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of 25k. Not bad, eh?
7: Better.
6: Bank better, New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari good brands nahi hai.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
11: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस के अटैक के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों में यूएस मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है, जिससे दोनों देशों के बीच चल रहा फ्रेजाइल अग्रीमेंट अब बड़े खतरे में है। एक तरफ जहां ट्रंप ने स्ट्राइक्स जारी रहने पर और मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कमर्शियल शिप्स के लिए अलग अलग रूट्स बनने से काफ़ी कंफ्यूजन और डर का माहौल पैदा हो गया है। इस पूरे तनाव के बीच ईरान ने अब ये शर्त भी रख दी है कि यूएस के साथ फाइनल पीस डील तभी होगी जब इसराइली फोर्सेस लेबनान से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगी। भारत में अयोध्या राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट केस में सस्पेक्ट्स की नेट वर्थ में अचानक 100-fold तक का एक्स ग्रोथ देखा गया है, जिन्होंने चोरी के पैसे से एक्सपेंसिव प्लॉट्स और होटल्स खरीदे। पर यह पूरा भंडाफोड़ आपसी पैसे के बंटवारे के झगड़े की वजह से हुआ। एसआईटी इस मामले में टिनी यादव समेत 30 लोगों की जांच कर रही है, जिन्होंने व्हाट्सएप चैट्स डिलीट और फोन फॉर्मेट करके एविडेंस मिटाने की कोशिश की थी। फिजी के फाइनेंस मिनिस्टर एस्रोम इमैनुअल ने साफ किया है कि जनरल इलेक्शंस से पहले कैबिनेट का साइज छोटा नहीं किया जाएगा और जरूरी बिल्स और रेफरेंडम के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज काम करती रहेंगी। फ्यूल क्राइसिस और रेवेन्यू में $200 million की गिरावट के चलते डेफिसिट बढ़कर 7% हो गया है, जिसे मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड बैंक, IDB और FNPF जैसे सोर्सेस से $1.4 billion का लोन लेगी। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के मैचेस आज से शुरू हो रहे हैं। आज सुबह 7 बजे एक ही मैच खेला जाएगा, जिसमें साउथ अफ्रीका कैनेडा से खेलेगा। कल जापान का मुकाबला ब्राजील से होगा, जर्मनी पेरेगुए से खेलेगा और नेदरलैंड्स की भिड़ंत मोरक्को से होगी। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचेस में आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे, स्वीडन वर्सेस फ्रांस, मेक्सिको वर्सेस इक्वाडोर, इंग्लैंड वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, यूएसए वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना, स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया, इजिप्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डे और कोलंबिया वर्सेस घाना मैचेस खेले जाएंगे। ICC विमेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंडिया को एक और हार का सामना करना पड़ा है। आज सुबह इंडिया की हार ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम के खिलाफ 6 विकेट से हुई। कल साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया था। पॉइंट टेबल की ओर अगर देखें, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, साउथ अफ्रीका दूसरे और इंडिया तीसरे स्थान पर है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड प्रथम, वेस्टइंडीज दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड वीमेंस टीम ग्रुप बी में फिलहाल 4th पोजीशन पर है। फिलहाल इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को लगातार दूसरी बार आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है और आज सुबह हुए दूसरे T20 मैच में इंडिया की हार 1 रन से हुई। फिजी में बिग फिजी फैक्ट टाइटल को 16 सालों के बाद बासो का टीम ने अपने नाम कर लिया है। कलम्बा की जीत सुब्रेल पार्क लंबासा में पेनल्टी किक्स में नावो के खिलाफ 3-1 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
10: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: समय की ओर देखें तो अभी 27 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। गुड मॉर्निंग के आपके कुछ मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले 4 बजे से पहले ही आज मिस्टर मटा मटा का मैसेज आया। राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आपको भी ये दिन, ये सुबह बहुत बहुत बार मुबारक हो।

0: Ram, Vijay and Pooja. Hope you both had an amazing weekend. Mata Rani ki kripa rahe, enjoying my drive to work, listening to you both. Have an awesome day. Jaya ji ki ur se ye message aaya hai. Abhi Jaya ji bhi thoda regular ho chuki hai na. Almost every day inka bhi message aa hi jata hai. So thank you so much Jaya ji. Aapke bhi message ke liye bahut bahut shukriya. Aapko bhi. Have a wonderful day.
1: Aur Bollywood mein dekhe to sequels jo hai is one of the favorite things jo बॉलीवुड में होता रहा है, बहुत ज़माने से होता आ रहा है. एंड एक डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटमेंट हो जाता है. जो कैरेक्टर्स हैं हम सभी की ज़िंदगी में एक अलग जगह जो है ये बना लेते हैं. और बॉलीवुड जो है यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, एक नहीं दो नहीं लेकिन तीन तीन फिल्मों के सीक्वल्स की.
0: अच्छा, एक तो धमाल का है, दूसरा कौन सा है?
1: देखो मेरी जो लिस्ट है उसमें धमाल है ही नहीं.
0: अच्छा, धमाल है ही नहीं.
1: बिकॉज़
0: आई नो, सी वेलकम टू द जंगल एंड धमाल तो ऑलरेडी, खैर इट्स ऑन, वेलकम टू द जंगल रिलीज हो चुकी है. आई एम नॉट श्योर धमाल कब रिलीज हो रही है, बट दीज आर ऑल्सो सीक्वल्स और फ्रेंचाइजीज बेसिकली. आपकी लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में?
1: मेरी लिस्ट में तीन फिल्में जो हैं. सबसे पहले तारा सिंह आ रहे हैं वापस,
0: गदर
1: 3.
0: ओके.
1: दूसरी फिल्म जो जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं, भूषण कुमार, निधि दत्ता, साथ में सनी देओल, वरुण धवन, ये वापस आ रहे हैं एक साथ, बॉर्डर 3.
0: बॉर्डर 3?
1: यस.
0: ओके.
1: और तीसरी जो फिल्म है इस लिस्ट में, ये कब रिलीज होगी कुछ पता नहीं, लेकिन रॉकी भाई वापस आ रहे हैं.
0: रॉकी भाई, ये यश की KGF.
1: KGF Chapter 3.
0: ओके.
1: ये तीन हो गई. अच्छा, एक और है मेरी लिस्ट में.
0: हाँ.
1: इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना वापस आ रहे हैं.
0: पुष्पा 2 आ रही है क्या? नहीं, 3.
1: पुष्पा 3.
0: अच्छा, तो कब की आ गई थी ना.
1: हाँ, मेरी लिस्ट में एक और है.
0: हाँ.
1: स्त्री 3.
0: स्त्री 3 के बारे में मैंने नहीं सुना.
1: हाँ, स्त्री 3 जो है 13th August 2027 में रिलीज होने जा रही है.
0: अरे अभी तो एक साल है इसको, चलो.
1: ओके. okay. मेरे लिस्ट में एक और है.
0: जी बताइए.
1: दृश्यम 3.
0: हाँ, दृश्यम 3 के बारे में सुना है मैंने.
1: हाँ, और फाइनली हेरा फेरी 3.
0: हेरा फेरी 3 तो पता नहीं कभी आएगी, मतलब इतने दिनों से इसके बारे में बात ही हो रही है, अभी तक तो आई नहीं है. बट लेट्स सी व्हेन इट रिलीजेस, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज लॉन्गेस्ट अवेटेड सीक्वल्स, हेरा फेरी 3, जिसका बड़े बड़े दिनों पहले अनाउंसमेंट हुआ था. कास्ट जो है कुछ और अनाउंस हुई, फिर उसके बाद में वो पूरे की पूरी कास्ट ही बदल गई, और अब किसी दूसरे कास्ट के साथ ये फिल्म जो है आने वाली है, ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं. बट लेट्स सी कब तक ये आती है. फिल्मों की बात ही आपने की, और कोई है क्या? मतलब और
1: नहीं, इतना काफी है अभी ना.
0: इतना काफी है. अच्छा, फिल्मों की बात ही आपने की, तो आई थिंक जो भी फिल्में आपने मेंशन की है, दीज फिल्म्स आर वेरी पॉपुलर. एंड द फैक्ट कि इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत पॉपुलर हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुष्पा के बारे में मेंशन किया, एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टर पुष्पा इटसेल्फ वेरी वेरी पॉपुलर. तो आज आपसे हम एक सवाल करेंगे, जहां पर आपको एक एक्टर बताएंगे और एक्टर ने किस किरदार को प्ले किया है वो बताएंगे.
1: Okay.
0: और वो दो चीजें सुनकर आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी फिल्म है.
1: बताइए.
0: सिर्फ एक्टर का नाम और एक्टर ने कौन से कैरेक्टर प्ले किया है, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी विल मेंशन. एंड आफ्टर लिसनिंग टू दीज टू थिंग्स आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं. राइट. सो आज का हमारा सबसे पहला सवाल आपके लिए, जिसके लिए जवाब आप अपने हमें दे सकते हैं. BF सबसे पहले लिखना है, फिर 5599 पर अपने नाम के साथ अपना आंसर आपको सेंड करना है. और क्वेश्चन इज, ऋतिक रोशन एज अ मैथ टीचर.
1: हाँ, इस फिल्म के बारे में मैंने बहुत सुना.
0: राइट, तो कौन सी फिल्म है ये, ऋतिक रोशन एज अ मैथ टीचर? लेट्स सी, डू यू नो द आंसर?
1: मुझे तो अभी ऐसे याद नहीं आ रहा. आई नो किसी पर्सन के बारे में ये फिल्म थी, बट याद नहीं आ रहा मुझे.
0: ओके. तो आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई जवाब हो तो फटाफट हमारे पास भेजिए. 5599 पर आपको अपना आंसर भेजना है. BF लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर नाम. लेट्स सी, क्या आपके अलावा औरों को भी याद नहीं आ रहा है, या फिर कोई तो ऐसा है जिसको याद है कि कौन सी फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन ने एक मैथ्स टीचर का किरदार प्ले किया था?
1: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर हमारे पास आप भेज सकते हैं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Driving you home.
3: Drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
7: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
8: A high of 15, a bit of cloud should stay mainly fine today. Coming into the city, the Northern Motorway, 22 minutes in from Constellation Drive, 43 from Silverdale. We're slow at Snow Planet and Greville to Waito Valley, but heavier Constellation. Northwestern, 23 minutes in from Massey, slow Massey to Te Aratu and St Luke's to the city. Southern, half an hour in from Mataco, slow Papakura on and off to Mount Wellington.
7: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
9: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
11: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up. Throwback.
13: अभी 13 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. सबसे पहले सवाल आपने पूछा, कुछ लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे हैं, जिनको फिलहाल शायद याद है कि ये फिल्म कौन सी थी.
14: बिल्कुल, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारा सवाल ये है कि हम आपको एक एक्टर का नाम बताएंगे एंड द कैरेक्टर ही और शी प्लेड. आपको बस ये दो चीजें सुनकर अनुमान लगाना है कि उस फिल्म का नाम क्या है. ठीक है, तो आप अगर अनुमान लगा सके अपना जवाब जो है ये आप हमारे पास भेज सकते हैं BF लिखकर अपने नाम के साथ. कुछ लोगों ने सही तो कुछ लोगों ने गलत आंसर्स भी दिए हैं. हमने आपसे पूछा कि ऋतिक रोशन, जिन्होंने एक मैथ टीचर का किरदार जो है ये प्ले किया, और आपको बस वही जवाब जो है ये हमारे पास भेजना है, मतलब कौन सी फिल्म है ये आपको बताना है. Probably some of you have not heard the entire question, इसीलिए कुछ लोगों ने हमारे पास अलग अलग आंसर्स भेजे हैं, जैसे कि तारी ज़मीन पर हिचकी किसी ने लिख कर भेजा है, और किसी और का जवाब आया है तारी ज़मीन पर. तो ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि हमने आपसे कहा था ऋतिक रोशन, जिन्होंने एक मैथ टीचर का रोल प्ले किया है.
13: तो कौन सी ये फिल्म थी? BF अपना आंसर और अपना नाम, ये तीन चीज़ें आपको 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करनी है. अभी तक जिन लोगों ने अपने आंसर्स भेजे हैं, क्रिश थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए, गुंजन है, सनी थैंक यू सो मच आपके भी जवाब के लिए.
14: और इसके अलावा हमारे पास कुछ और मैसेजेस जो है ये आया है. रोनल ने अपना आंसर भेजा है, साथ में नितिका है, और निलेश ने इन्होंने भी अपना आंसर हमारे पास भेजा हुआ है।
13: और साथ में मजीद अहमद है मेट्रोपॉलिटन एयर कंडीशनिंग से। नीरज आपने भी अपना आंसर भेजा है, थैंक यू सो मच। और विधि आपने भी अपना जवाब भेजा है। सो बी एफ आंसर और नाम 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं। वैसे आज 29th ऑफ जून और बस कल फाइनल डे ऑफ द मंथ। वैसे आज अगर आपका बर्थडे है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अपने मैसेजेस जो है ये हमें आप भेज दें समय से पहले ही, ताकि अगले घंटे हम आपको विश कर सकें। वैसे आज वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन डे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स इंटरनेशनल फिशरमैन डे।
14: ओह ओके, वेरी नाइस।
13: इट्स अ गुड, इनफैक्ट इट्स अ गुड डे टू बी आउट यू नो
14: फिशिंग।
13: हां, मौसम साफ रहेगा आज ना, इवन दो इट्स गोना बी Depends on the waves.
14: depends on the waves.
13: okay. International Mud Day, ये भी आज celebrate किया जा रहा है। I don't know US में क्यों, लेकिन आज 29th of June के दिन please take my children to work day, ये mark किया जाता है। हाँ
14: okay.
13: और साथ में International Day of Tropics, the tropical countries अभी a lot of us would want to be in a tropical country ना।
14: राइट, तो देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और इनफैक्ट यह न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दें, दिस इज द फाइनल वीक फॉर टर्म टू, और ये आखिरी वीक है जहाँ पर इसके बाद अब स्कूली छुट्टियाँ ऐसी फ्राइडे से शुरू हो जाएंगी। एंड वी होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, मतलब आपने अपनी अपनी तैयारियाँ जो है ये कर ली हैं, यू प्लान थिंग्स आउट अकॉर्डिंगली अपने बच्चों के लिए। एंड इफ नॉट तो डेफिनेटली हम बाद में चलकर प्रोग्राम में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे जहाँ पर यू विल गेट अ चांस टू यू नो बी पार ऑफ इट, योर किड्स विल गेट अ चांस टू बी पार ऑफ इट, ताकि स्कूली हॉलीडेज जो है ये आप आराम से इंजॉय कर सकें।
13: और आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे हाथ लगी है। नैनीताल में हनीमून एक पति को बहुत महंगा पड़ा।
14: ओह ओके,
13: हाँ क्यों पड़ा, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी कहानी जो है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपकी खातिर होगा। और साथ ही में उसके बाद आज सेलिब्रिटी अलार्म भी काफी इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट आवर होने वाला है। बट राइट नाउ आज का हमारा पहला थ्रोबैक
14: ये इंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और उदित नारायण साथ में लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। और फिल्म जो आई थी जिसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो मिली, अनफॉर्चुनेटली आई डिन डोंट थिंक इट डिड दैट वेल इन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन म्यूजिक इस फिल्म का बहुत पसंद किया गया था। 2002 में आई थी फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, उसी का ये गाना राहुल शर्मा द्वारा कंपोज्ड, आज आपके लिए हमारा पहला थ्रोबैक।
13: तो गाने को एंजॉय करें, और जब तक थ्रोबैक आप सुन रहे हैं तब तक का वक्त है आपके पास। बी एफ आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेज भी सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.7 degrees temperature अभी आप feel कर रहे हैं आज का high 15 overnight कम से कम 6 degrees रहेगा और it's going to be a cloudy start to the day. बाद में मौसम साफ हो जाएगा. Sunrise 7:34 AM पर, sunset शाम 5:15 PM होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by.

0: .nz. फिलहाल 3 मिनट हो रहे हैं अब 7 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज मंडे है, 29th of जून.
1: मॉर्निंग जनवरी में कहाँ चले गए आप वापस? सारी दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हैं.
0: नहीं, मैं आगे चला गया था 2027 में.
1: अच्छा, 2027 में. मुझे लगा आप 2026 के ही जनवरी में चले गए. But anyways, definitely आपके लिए मॉर्निंग मेडिस का ये सफर हम शुरू कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और फिलहाल समय की ओर देखें तो बस करीबन 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी को. आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं जहां कहीं भी है साथ आप हमारा दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया.
0: सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो सवाल आपने पूछा था उसके कुछ और जवाब आए हैं.
1: हाँ, नीरज के बाद हमारे पास विधि और शुभम, इन्होंने अपना आंसर भेजा, साथ में हर मिलाप इनका आंसर आया. आई थिंक इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट डिस्पाइट दैट हो सकता है कई लोगों को इसका जवाब नहीं पता हो बिकॉज उन्होंने शायद ये फिल्म नहीं देखी हो. बट अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इस फिल्म के अराउंड और पीपल इन द बिगिनिंग वर नॉट रियली वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि आनंद कुमार, जिनकी लाइफ पर आधारित है ये फिल्म, जो कि एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिक्स एजुकेटर हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम्स वगैरह जो है पटना बिहार में इनफैक्ट शुरू किया था और इसकी वजह से बहुत से जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको भी बहुत यू नो एडवांस एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह जो ये देने का मौका मिला. नॉट जस्ट दैट बट दे एक्चुअली पास्ड इट विद सच अमेजिंग रिजल्ट्स, जिसके बाद चलकर इनके बारे में डिटेल्स जो है लोगों के सामने आए और फिर इनकी लाइफ पर ये फिल्म सुपर 30 जो है ये बनी थी. और पीपल आर नॉट रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि ऋतिक रोशन जो है वो दरअसल एक बिहारी एक्सेंट में जिस तरह से बातें कर रहे थे वो थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था लोगों के लिए. बट नेवरदलेस फिल्म डिड क्वाइट वेल और फिल्म की कहानी भी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे की गई थी. अपार्ट फ्रॉम ऋतिक रोशन इस फिल्म में मृणाल ठाकुर थी, साथ में नंदिश संधू थे, वीरेंद्र सक्सेना, पंकज त्रिपाठी वॉज ऑल्सो देयर एंड आदित्य श्रीवास्तव, अमित साध ने भी इस फिल्म में काम जो है ये किया था. और कमाल की बात ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे विकास बहल. तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है सुपर 30, ये आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. और आज जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन ने एक मैथ्स टीचर का किरदार प्ले किया था, द आंसर, द करेक्ट आंसर राधा, जो आप सबने मोस्टली हमारे पास भेजा, इज सुपर 30.
0: थैंक यू सो मच आंसर्स के लिए. थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे और सेलिब्रिटी अलार्म भी आपके साथ खेलेंगे. लेकिन एक वैकेंसी आई है ऑन द इंटरनेट और ये सभी का ध्यान अपनी ओर जो है ये अट्रैक्ट कर रही है.
1: तो कहाँ पे ये?
0: आई एम नॉट रियली श्योर ये कहाँ पर है, लेकिन dating.com dating.com जो है इनको तलाश है एक पर्सन की जो एक प्रोफेशनल रोल ले सके. आई थिंक इन इंडिया है और मंथली अराउंड $3,000 सैलरी होगी. और ये जो शख्स है इनका रोल है, मालूम है क्या होगा?
1: क्या?
0: चीफ ब्रेकअप ऑफिसर.
1: अच्छा, लोगों का ब्रेकअप कराना होगा.
0: हाँ, वो कौन सी फिल्म थी?
1: तू झूठी मैं मक्कार.
0: हाँ
1: हाँ, उसमें रणबीर कपूर और वो कौन थे यार, उनका नाम ही भूल गई मैं.
0: तो ये जो रोल है ये प्ले करेंगे. एंड dating.com इज सर्चिंग फॉर इट्स फर्स्ट एवर चीफ ब्रेकअप ऑफिसर, समवन विद एक्सेप्शनल इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न डेटिंग. If you are the friend everyone calls before sending a breakup text, we want to hear from you. आपका काम क्या होगा? Get on the call and end it for people who know it's over. Clearly, kindly on their behalf. Read the relationship and decide the right words, tone and approach. Review each situation and determine how it gets done. Rate the messiness, easy exit, complicated or complete disaster. ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा. तो ये काम है dating.com पर.
1: वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर आप में ये टैलेंट है, वैसे आप अभी एग्जैक्टली में नहीं बता पाए कि कहाँ पर ये नौकरी है, तो आप भी खुद को इनफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. बट अगर आप हमें कोई एग्जैक्ट डिटेल्स दे पाए तो ही जाकर लोग इसके बारे में सोच सकते हैं. इफ इट्स समथिंग दैट यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम बेसिकली, देन आई थिंक इट माइट वर्क फॉर यू एज वेल. इफ इट्स बेसिकली न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा है तो आई डाउट न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ होगा वैसे, बट जस्ट इन केस.
0: ऐसी और भी कई स्टोरीज हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में। 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस भी होगा।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo jao, papio. Tubo jao.
0: Rashi Vibes. Bollywood ka asli blockbuster.
2: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
3: राशि वाइब्स आज के आपके कैसे होने वाले हैं ये आपको बता देते हैं, जबकि 17 मिनट हो रहे हैं अभी 7:00। मेष यानी एरिस, आज शेयर मार्केट से आपको फायदा हो सकता है। डोंट रश इनटू एनीथिंग टुडे। बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, किस्मत का साथ मिलेगा और अपने लोन्स वगैरह समय पर आप पे कर पाएंगे।
4: वृषिनी टोरस, आज आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है जहां पर मोस्टली कुछ नए तरह के प्लान्स आप बनाने वाले हैं ताकि फाइनेंशियली लाइफ में थोड़ा स्टेबल हो जाए, काम करने के तरीके पर एक सुधार, एक चेंज देखा जाएगा जो भविष्य में चलकर आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। आज आपकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी आपकी इज्जत काफी बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको काफी ज्यादा इज्जत जो है ये देंगे।
3: मिथुन यानी जेमिनी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उन्नति करेंगे जीवन में, समझदारी से काम करें तो फायदा हो सकता है, लेकिन परिवार के बारे में थोड़े वरीड रहेंगे।
4: कर्क ने कैंस, आपके लिए कहा गया है कि पैसों के मामले में काफी फायदा हाथ लगेगा और अपना रास्ता छोड़कर आप दूसरों के काम में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इस वजह से दो चीजें हो सकती है। एक तो आप खुद ये भूल जाएंगे कि आपको क्या करना है, लाइफ में क्या हासिल करना है, उसकी बजाय आप बाकी चीजों में फोकस्ड रहेंगे, और दूसरी ओर दूसरे के चीजों में पड़ने से आपकी खुद की मुश्किलें जो है ये बढ़ सकती है। कीमती चीजों को संभाल कर रखे, लेन देन के मामले में भी थोड़ा केयरफुल हो जाए।
3: सिंह यानी लियो, आज उन्नति के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे, सभी ओर से अच्छी खबर मिलेगी और हो सके तो कोई रिस्क आज आप ना लें।
4: आज कनी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। जैसे कि कभी कभी कुछ कोशिशें हम जीवन में करते हैं और चाहते हैं कि यार ये कोशिश सफल हो जाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाए हमको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट टुडे यू विल सी दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है ये मिलेंगे, आपकी कोशिश, आपका किस्मत सब आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिलाएंगी। और साथ में आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि नौकरी के मामले में आपके जो बॉसेस हैं बहुत खुश होंगे आपसे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आज आपको जरूर मिलेंगे।
3: तुला यानी लिब्रा, आपको भी आज कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया होगा, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और कहीं कोई आपके पैसे वगैरह बाकी था तो वो भी आज आपको पे करेगा।
4: वृश्चिक ने की स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि किसी अननोन व्यक्ति पर अधिक विश्वास आपके लिए हानिकारक साबित होगा, बिजनेस है आपका तो अच्छा चलेगा और रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स टुडे।
3: धनु यानी सेजिटेरियस, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, कोशिशें सक्सेसफुल होंगी, बॉसेस काम से खुश होंगे और मन में आज कुछ डर सा रहेगा किसी चीज को लेकर।
4: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है घर पर मेहमान आएंगे, इनके साथ अच्छा समय बीतेगा, अच्छी खबर कोई आपको मिल सकती है। नौकरी के मामले में आपके जो बॉसेस हैं इनसे आज आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है जिसकी वजह से कुछ नया सीखने को भी मिलेगा एंड यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट।
3: कुंभ यानी एक्वेरियस, फायदा होगा, गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहें, ऑफिस में प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और आज आपकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने वाली है।
4: और फाइनली मीन एंड पाइसेस, आपके लिए कहा गया है बिजनेस अच्छा चलेगा, कुछ नए एक्सपेंसेस सामने आएंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है ये थोड़ा डगमगाए, शारीरिक कष्ट भी आपके लिए संभव है ऐसा आपके लिए बताया गया है, दैट इज व्हाई यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। आज का दिन आपके लिए ऐसा बीतेगा पर उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए बहुत ही अच्छा कमाल का बीते। पर फिलहाल थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, एक आवाज सुनाएंगे आपको, देखते हैं आप में से कितने लोग इस आवाज को सही सही पहचान पाते हैं।
3: एक और मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, आई वुड लव टू से योर मॉर्निंग प्रोग्राम इज द बेस्ट एंड आई लिसन एवरी मॉर्निंग, आई हैव अ फिलिपिनो फ्रेंड विद मी नेम एडसन, ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी बट ही लव्स योर प्रोग्राम विद मी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ वंडरफुल डे, रुवेन पापाटोय टोय से। रुवेन थैंक यू सो मच, और साथ में आपके जो दोस्त हैं उनको कुमुस्ता,
4: क्या
3: कुमुस्ता, कुमुस्ता,
4: अच्छा फिलीपींस में कुमुस्ता बोलते हैं गुड मॉर्निंग,
3: आई थिंक सो, मुझे लगता है हेलो,
4: तुझे पता नहीं तो बोला क्यों,
3: अब सही होगा तो वो बता देगा अभी ना,
4: पर आप पहले पता करके भी बोल सकते थे ना।
3: अभी मेरे पास तो कोई फिलिपिनो है नहीं दोस्त यहाँ पे जिसे मैं पूछूं,
4: गूगल, डोंट गूगल,
3: अरे वही करके तो बोल रहा हूँ ना।
4: हाँ ओके, इफ यू यूज्ड गूगल देन इट्स फाइन, अगर गलत हुआ तो रुवेन अभी आपको मैसेज करेंगे, पर अगर सही हुआ तो चलो उनके जो दोस्त हैं ये समझ जाएंगे कि आपने क्या बोलने की कोशिश की। बाय द वे एडसन, गुड मॉर्निंग एडसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे आपको भी।
5: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
6: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना।
5: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सिर्फ रोवा पर।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: HBO Max is the all-killer, no-filler.
5: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
4: Exactly.
5: Right, we'll see. What have they got?
4: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, One Battle After Another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
5: Whoa, okay, I get it. Fair call.
4: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
8: brought to you by 40

0: 25 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, अब वक्त है आज का सेलिब्रिटी अलार्म, ये हम आपके लिए लेकर आए और देखें कि क्या आज आप आवाज जो है पहचान सकते हैं या नहीं।
1: यस, रिमेम्बर कि आपको आवाज अच्छे से सुननी है और अगर आपने आवाज पहचान ली उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज हमारे पास आपको अपना जो जवाब है ये मैसेज करना होगा, एज इन यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट अस BF लिखना है सबसे पहले, फिर आपको लिखना है कि किसकी आवाज है, किस सेलिब्रिटी की आवाज है ये, उनका नाम लिखकर आप हमारे पास 5599 पर सेंड कर सकते हैं, इतना आसान है ये।
0: तो सुनिए पहले।
2: हालात सबकी जिंदगी में आते हैं लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हमें को जंग लगा देगा।
0: So, ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी।
1: मतलब इतना इजी क्यों किया आपने आज?
0: आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मैंने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, लास्ट वीक काफी हेवी हो गया था, होते थे ना
1: हेवी हो गया था।
0: हाँ,
1: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग,
0: भारी भरकम हुआ था।
1: राइट, सो एनीवे, सो लेट्स सी क्या आप ये आवाज पहचान पाते हैं नहीं। आई थिंक इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि किसकी आवाज है, तो ज्यादा बोलना नहीं है इस पर, बस आपको इतना बताना है कि आप हमारे पास आंसर्स अपने नाम के साथ BF लिखकर 5599 पर जल्दी से सेंड कर दीजिए।
0: अच्छी तरह से आवाज एक बार फिर आप सुन लें।
2: हालात सबकी जिंदगी में आते हैं लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हमें को जंग लगा देगा।
0: तो अब BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर हमारे पास आप भेजे।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: underscore.nz.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में जस्टिस सेलेक्ट कमेटी ने न्यूजीलैंड फर्स्ट और नेशनल के कॉलिशन एग्रीमेंट वाले उस बिल को बिना बदलाव के पास करने की मंजूरी दे दी है जो इंग्लिश को टेरियो माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज की तरह लीगली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहता है। हालांकि लगभग दो तिहाई सबमिटर्स और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया है और इसे टाइम की बर्बादी और माओरी लैंग्वेज को कमजोर करने वाला कदम बताया है। लोअर नॉर्थ आइलैंड के कुछ हिस्सों में रात 11 बजे के बाद एक लाइट अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। इस 4.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का सेंटर होरोफेनुआ के लेविन से 65 किलोमीटर दूर समुद्र में था जो 54 किलोमीटर गहरा था। जियोनेट के मुताबिक तकरीबन 5,000 लोगों ने झटके महसूस होने की रिपोर्ट दी है। फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 का पहला मैच फिलहाल साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं। वर्ल्ड रग्बी नेशंस चैंपियनशिप 2026 इस सप्ताह अंत से शुरू होगा। शनिवार को रात 7 बजे ऑल ब्लैक्स फ्रांस को क्राइस्टचर्च में होस्ट करेगा और उसके बाद रात 8:30 बजे जापान इटली का मैच खेला जाएगा और 10:10 पर वॉलबीज आयरलैंड को होस्ट करेगा। रविवार की सुबह 1:10 पर फिजी वेल्स का मुकाबला करेगा। 3:40 AM पर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा जबकि सुबह 7:10 पर अर्जेंटीना और स्कॉटलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। फिलहाल सप्ताहांत हुए एक मैच में जापान 15 से की हार माउरी ऑल ब्लैक्स के खिलाफ 38-31 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz।

0: डाइनिंग टेबल पर ले आए
1: वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
6: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
7: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
8: The Breakfast Show. With

0: किसका बर्थडे भाई?
1: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
0: हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज का दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। और सबसे पहले तो आज वेरी हैप्पी बर्थडे अनाया आपको हम कहना चाहेंगे। आपकी मम्मी करिश्मा की ओर से मैसेज आए हैं, आई'd लाइक टू विश माय डॉटर अनाया हैप्पी फिफ्थ बर्थडे। मम्मी करिश्मा है, नाना धर्मेंद्र हैं, भैया अयान हैं, डैड हैं और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी आज आपको याद कर रहे हैं। अनाया ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
3: और इनके अलावा आज अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी जो है कि हम विश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी टू द लव ऑफ माय लाइफ सोनम, लाइफ विद यू हैज बीन अ स्मूथ सेलिंग, आई ओनली हैव वन थिंग फॉर यू टुडे एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी एंड आवर फैमिलीज, आई लव यू टू द मून एंड नेवर कम बैक। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। और इमरान ने ये मैसेज भेजा है, एक तो अपनी प्यारी सी पत्नी को विश तो किया लेकिन खुद का नाम ही लिखना भूल गए। बट अ वेरी हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सोनम एंड इमरान, आपको ये शादी की सालगिरह बहुत बहुत बार मुबारक हो।

0: www.rfm.nz।
1: 21 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7 या 8 बजने में और बहुत कम लोगों ने जाकर अनुमान लगाया है कि आज सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज किन की है, तो आपको हम अराउंड 6 मिनट्स का टाइम फाइनल दे रहे हैं।
2: एक बार आवाज सुना दे फिर से। इतना इजी है, हमें तो लगा था कि शायद बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा और ऑन टॉप ऑफ इट जितने लोग अपने आंसर्स भेजेंगे सभी सही जवाब भेजेंगे। जितने आंसर्स आए उनमें से गलत आंसर आया है ये सोचकर भी मैं थोड़ा हैरान हूँ। शाजिया आपने कोशिश की, थैंक यू सो मच, लेकिन आज जो आवाज आपने सुनी है वो दीपिका पादुकोण की बिल्कुल भी नहीं है।
1: तो
2: किसकी आवाज है आप दोबारा से सुन सकते हैं और फिर अपना आंसर भेज सकते हैं हमें।
1: हैव अ लिसन वेरी वेरी केयरफुली क्योंकि आखिरी बार ये आवाज हम आपको सुना रहे हैं।
3: हालात सबकी जिंदगी में आते हैं लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हमें को जंग लगा देगा।
1: तो आपके पास तकरीबन 6 मिनटों का वक्त है। BF आंसा और राम, ये तीन चीजें लिखकर 5599 पर आपको हमारे पास भेजनी है और बताना है कि

आज के सेलिब्रिटी अलार्म में हमारे सेलिब्रिटी या हमारी सेलिब्रिटी जो है वो कौन है, जवाब देखेंगे थोड़ी देर बाद। और साथ ही में मत भूले कुछ और दिलचस्प जानकारियां हैं, ये भी आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आएंगे।

0: तो आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत ये गाना आज हम पेश कर रहे थे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में, फ्रॉम द फिल्म खट्टा मीठा। ये फिल्म जो है 2010 में आई थी और त्रिशा कृष्णन के साथ साथ अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम किया था। अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय सुनिधि चौहान एंड ऑफ कोर्स के, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज और ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपके लिए आज हमने पेश किया। बाय द वे हमारे पास एक मैसेज आया है और ये मैसेज हमें भेजा है एक नंबर से किसी ने, अपना नाम इन्होंने नहीं लिखा है, बस इनका मैसेज आया है कैन यू रीड माय बर्थडे मैसेज प्लीज। 0768 आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स है। अनफॉर्चुनेटली आपका जो बर्थडे ग्रीटिंग है, अगर आपने कोई बर्थडे ग्रीटिंग भेजा है, ये हमारे पास नहीं आया है, विच इज वाई वी हैव नॉट रेड, बिकॉज वी हैव जस्ट गॉन बैक एंड चेक ऑल द मैसेजेस जो सुबह से हमारे पास आए हैं, उसमें से आपका कोई मैसेज नहीं है और जितने मैसेजेस आए थे वो हमने पढ़ दिए हैं। सो इफ यू हैव गॉट अ बर्थडे ग्रीटिंग आप भेज सकते हैं, डेफिनेटली वो हम आपके लिए थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे।
1: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: 10 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। याद रखें इसी फ्राइडे को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में सिद्धार्थ रंदेरिया और गुज्जू भाई प्रोडक्शंस की पेशकश, गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, आप एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग प्ले जो है, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं, टिकट्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं। premierticket.co.nz विजिट करते हुए टिकट्स आप ले सकते हैं।
1: और इसके अलावा आपको हम ये भी याद दिला दें कि अभी जो सवाल हमने पूछा था आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में कि किसकी आवाज़ है आपको अनुमान लगाना है, अपने आंसर्स जो है ये आपको हमारे पास भेजने हैं 55599। तो काफ़ी लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं और थैंक यू सो मच आप सबके जवाबों के लिए। सबसे पहले आज जो जवाब है, बाय द वे जो जवाब है ये चेक करने से पहले रुवेन ने मैसेज किया है जो हाँ। आपने बोला था ना, क्या बोलते क्या बोला था आपने, जो
0: कुमस्ता मींस हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग इज मदांगा उमांगा।
1: ओके, तो कहीं ना कहीं गूगल भी गलत निकला। उसके अलावा हमारे पास विधि, आपने अपना आंसर भेजा, थैंक यू सो मच। सोम का आंसर आया, इमरान है, शाजिया ने दोबारा से अपना जवाब भेजा है, सिमरन ने आंसर भेजा है, रायना वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी जवाब हमें जरूर मिला है
0: 1441, थैंक यू सो मच। साथ में शीनल चंद है, शर्वना लता आपका जवाब आया है, सिमरन थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए।
1: इसके अलावा 4163 वी हैव गॉट योर आंसर, ईशा आपने अपना जवाब भेजा है, नहीं अच्छा अमित ने भेजा है जवाब, ईशा डियोर लिखना चाहते थे, नहीं वो गलत है अमित, रियली सॉरी अबाउट दैट।
0: कोमल नायडू, आयरा और पूजा आपने भी अपने आंसर्स भेजे। तो आज की हमारी सेलिब्रिटी
1: आलिया भट्ट, वेरी इजी, हमने सोचा था कि सारे आंसर्स सही होंगे बट क्वाइट सरप्राइजिंगली हम कह सकते हैं कुछ आंसर्स जो है ये गलत निकले, जैसे दीपिका पादुकोण, ईशा देओल, ये भी आंसर्स जो है ये आपने भेजे। बट नेवरदलेस आज हम कह सकते हैं कि आपने हमारे जो सेलिब्रिटी अलार्म में जो सेलिब्रिटी है इनकी आवाज़ पहचानी, विच इज़ बेसिकली आलिया भट्ट का जो सही जवाब ये आपने दिया, मजोरिटी ऑफ इन यू ने बट बेसिकली जवाब जो है ये दिया है, सही आवाज़ जो है ये पहचानी है। तो नाउ कल जब आपके लिए हम सेलिब्रिटी अलार्म लेकर आएंगे, We will not be getting you the same voice. कल एक नई आवाज आपके लिए होगी।
0: बस थोड़ी देर बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट, अगले घंटे व्हाट्स योर टेक में आज प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका भी आपको हम देने वाले हैं और आज की एक ट्रेंडिंग खबर उससे पहले आपके लिए होगी इस प्रोग्राम में।
1: राइट, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा जो आपके लिए लेकर आएंगे। बाय द वे बिफोर यू मूव ऑन आई हैव गॉट समथिंग टू शेयर,
0: बताइए।
1: एंड दिस इज अबाउट आईकिया जो कि काफी पॉपुलर ब्रांड है यहाँ न्यूजीलैंड में, अब हो सकता है इसे अपना कॉम्पिटिशन जो है ये मिल जाए। द वेरी फर्स्ट के होम स्टोर जो है ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खुल चुका है और यहाँ पर फर्नीचर, होम डेकोर जो है काफी स्मॉलर फॉर्मेट है बेसिकली, ये ऑफ अ के मार्ट स्टोर ये सब कुछ मिलता है एंड इट्स कॉल्ड के होम। एंड के मार्ट का कहना है कि दे आर नो कन्फर्म्ड प्लान्स फॉर न्यूजीलैंड येट, लेकिन वो मानते हैं कि दे इज़ अ पोटेंशियल प्लान कि ऐसा हो सकता है और वो ऐसे 50 के होम्स जो है, 50 के होम स्टोर्स जो है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ओपन करेंगे, ट्रायल करेंगे और अगर सक्सेसफुल हुआ तो इट बी कीप ऑन रनिंग। रिटेल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आइकिया का अराइवल ऑकलैंड में हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि मोर देन 1.7 मिलियन विजिटर्स रहे हैं आइकिया के इस ब्रांच में इन इट्स फर्स्ट 6 months, इमेजिन दैट। एंड दैट हैज़ एनकरेज्ड मोर शॉपर्स टू कंपेयर प्राइसेस और होमवेयर वगैरह जो है ये लोग आइकिया से लेना पसंद करते हैं। Although Kmart remains one of the New Zealand's best known retailers, लेकिन experts का कहना है कि a smaller K home store actually ये competition के लिए अच्छा हो सकता है, especially in city centers जहाँ पर बड़े Kmart stores जो है they are harder to build. Retail analysts का मानना है कि कुछ shoppers are spending more on affordable stylish home decor, making it like a good time अगर Kmart जो है ये expand कर सके homeware business में भी।
2: Step for a man that can lead for mankind. Houston, practically the basic.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Almost 11 degrees temperature ho chuka hai. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 6 degrees rahega. Aaj baad mein mausam saaf rahega. Sunset sham 5:15 baje hone ko hai.
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं, और ये है रश आवा, जहां पर रश आवा में आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर आपको तो खुशी होगी ही, क्योंकि ये तो ट्रेंड करते हैं, हमेशा ट्रेंड में रहते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, आपको एक बहुत ही बढ़िया मौका भी मिलेगा.
1: बिल्कुल मिलेगा मौका आपको. और ये जो शख्स हैं, सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दें, ये 25th of August को रहेंगे स्पार्क एरिना में. और ग्लोबल सेंसेशन करण औजला और उनका पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है ये आ रहा है ऑकलैंड, और इसके लिए टिकट्स बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं. आप livenation.co.nz या hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं, जहां से टिकट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे और टिकट्स के लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे. लेकिन अभी आज सुबह सुबह ट्रेंड पेट्रोल में हम आपको एक डबल पास जीतने का मौका जो है ये देना चाहेंगे. ऑल यू गॉट टू डू इज एक म्यूज़िक हम आपको बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स का सुनाएंगे. करण औजला का ये एक ट्रैक का म्यूज़िक होगा या कुछ भी ऑडियो होगा, आपको ऑडियो पीस हम सुनाएंगे. उसके बाद आपको बस इतना बताना होगा कि इस गाने का टाइटल क्या है.
3: हाँ, तो आपको बस अनुमान लगाना होगा कि गाने का टाइटल जो है ये क्या है. बट म्यूज़िक अच्छे से सुनिए, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. इससे में आपको जवाब जो है ये मिल जाना चाहिए, बिकॉज इनके गाने तो वैसे काफ़ी ट्रेंडिंग होते ही है, मतलब सबको पता हो जाता है सुनकर ही, लेकिन ये गाना तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आइकॉनिक है.
1: तो उसके बाद जैसे ही गाना आप आइडेंटिफाई कर लें, KA गाने का टाइटल और अपना नाम, ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना होगा. द फर्स्ट थिंग, KA और A के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. KA फॉलोड बाई योर आंसर, यानी गाने का टाइटल और अपना नाम, ये 5599 पर आप हमें भेजें. फर्स्ट हैव अ लिसन टू द सॉन्ग. तो ये है म्यूजिक,
3: बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं सुनाएंगे, बिकॉज इससे ज्यादा सुनाएंगे तो बस बेसिकली गाना ही सुना रहे हैं आपको,
1: क्योंकि इट्स वेरी इजी ना,
3: वेरी वेरी इजी, हमें ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है. तो आपको क्या करना है, अगर आपने गाना पहचान लिया है, जल्दी से KA लिखे, फिर उसके बाद में अपना आंसर, मतलब कौन सा गाना है ये, गाने का टाइटल लिखे और अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास आप भेज दें. रिमेंबर, बदले में आपके पास अपॉर्चुनिटी है ड्रो में शामिल होकर एक डबल पास जीतने का, इनके अमेजिंग अमेजिंग पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत, जो यहां ऑकलैंड में होने जा रहा है, वन एंड ओनली शो ऑन द 25th of August एट स्पार्क अरेना. और इसके लिए आप टिकट्स जो है ये जरूर ग्रैब कर सकते हैं, रिमेंबर livenation.co.nz विजिट करते हुए, या आप hum.rover.nz विजिट कीजिए डिटेल्स के लिए. पर याद रहे कि गाना आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है.
1: यस, एंड गेट रेडी फॉर अगस्त 25th स्पार्क एरिना में करण औजला रहेंगे. आंसर और नाम ये भेजिए. इन द मीन टाइम, हैप्पी 10th बर्थडे. फाइनली इनका बर्थडे मैसेज आ गया है. हैप्पी 10th बर्थडे टू द लाइट ऑफ आवर लाइव्स, आवर ब्यूटीफुल डॉटर सारा. यू मेक एवरी डे ब्राइटर एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस जस्ट बाय बीइंग इन इट. वी कांट बिलीव यू आर ऑलरेडी टर्निंग डबल डिजिट्स. लॉट्स ऑफ लव, मम, डैड, भैया ईशान हैं, सभी ने आज आपको बहुत सारा प्यार दिया है. सो सारा, आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम कहना चाहेंगे.

0: पूजा। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Bunnings Trade is here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
2: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when holiday mode strikes,
3: room service,
2: money loops back,
3: room service,
2: join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
4: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: The global phenomenon returns.
6: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
7: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
5: Watch the series the world will be talking about.
8: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
6: This is the moment you become queen.
5: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
9: There are easy ways to save up to $500 on power bills this winter, like only heating the rooms you're actually using, by shutting doors and blocking sneaky gaps, or turning off appliances that aren't in use, especially the ones you might have forgotten were even on, or by checking if an off-peak plan is right for you, to make the most of when power's cheaper. For more winter saving advice, visit EECA, that's EECA.govt.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: What's your take?
12: 18 मिनट हुए हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक में आज हम आपको कुछ सुनाने जा रहे हैं। यू हैव अ लिसन। ये एक बहुत यंग पर्सन जो है इन्होंने अपने इंस्टा पर जाकर शेयर किया। बेली इनकी उम्र शायद अराउंड 20 इयर्स होगी और उन्होंने ये जब शेयर किया, मनु बत्रा इनका नाम है, और जब मैंने इनको सुना तो यू नो आई रिकॉल्ड माई सेल्फ व्हेन आई वाज अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने काम जो है ये करना शुरू किया था, तो आई वेंट बैक देयर और उसके बाद मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर पूछते हैं कि व्हाट्स योर टेक। तो पहले आप क्या करें कि ये जो इनका ऑडियो है ये आप सुन लें कि इन्होंने इनफेक्ट कहा क्या था अपनी इस वीडियो में।
13: फर्स्ट, नो जॉब इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी पहले Five life lessons I learned from my 9-to-5 job. First, no job is a waste of time. मेरी पहली जॉब एक BPO में थी जहाँ मैं डेली दिन के 200 कॉल्स पिक करता था, बट उससे मैंने काम और पेशेंस होना सीखा, इवन इफ मुझे रैंडम लोगों से दिन की 5 गालियां सुननी पड़े। सेकंड, स्ट्रगल करना इजी हो जाता है। रोज सुबह उठना, इतना दूर कम्यूट करना, वापस आना और फैमिली के साथ टाइम निकालना, ये पूरे दिन का स्ट्रगल एक रूटीन बन जाता है। थर्ड, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल असेट। जब तुम डेली 8-10 घंटे काम करते हो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास बाकी चीजों के लिए कितना कम टाइम बचता है। अपने बचे हुए टाइम को हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ स्पेंड करो। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तुम खुद के पैसे कमाते हो तो पैसों के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि इस पैसे को मैनेज कैसे करें। फिफ्थ, हमारी टेक्निकल स्किल से ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। डजंट मैटर कि तुम उसे ऑफिस के अंदर यूज करो या फिर बाहर।
12: तो ये मनु बत्रा ने जाकर शेयर किया इंस्टा पर। तो मैंने सोचा कि आपसे आज पूछते हैं, व्हाट्स योर टेक, जो शायद इन्होंने अपने अराउंड 20 इयर्स की उम्र में नौकरी करते बहुत जल्द सीख लिया और 5 लाइफ लेसन्स जो इनके लिए रहे हैं। जब आपने काम शुरू किया या पहली नौकरी आपको मिली, व्हाट वाज वन ऑफ दोज लेसन्स जो आपको उस टाइम पर मिला था?
3: ये मुझसे पूछ रहे हैं आप?
12: सबसे पूछ रहा हूँ।
3: अच्छा, सबसे पूछ रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू शेयर टुडे। 0800 हम 0800-4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं इसके लिए।
12: गुड मॉर्निंग एफर्स।
11: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
12: हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हो?
11: मैं भी ठीक हूँ। कैसा रहा आपका वीकेंड?
12: वीकेंड भी ठीक ही था, बताइए।
11: वैसे उसमें जो भी पॉइंट्स बोले, कहीं ना कहीं यानी अग्री करता हूँ वो सारी चीजों पे मैं। और मैंने भी ऐसे काफी चीजें सीखी क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जगह जॉब किया है। तो सबसे पहले जब जैसे आई यूज टू हैंडल माई फादर्स बिजनेस इन इंडिया, तो वो टाइम पे शायद मैं काम तो करता था, मैंने भी बहुत जल्दी काम शुरू किया था, बट वो टाइम पे ऐसा होता था ना कि आपका खुद का बिजनेस है, आप कोई भी टाइम चले जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर जब आप कहीं और जाके जॉब करते हो तब ये सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। और मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मैंने भी बीपीओ में काम किया, उसके बाद बैक ऑफिस में, फिर फोटोग्राफी रिलेटेड, फिर प्रिंटिंग में, मैंने भी बहुत सारी सेक्टर में काम किया। और उस सारी चीजों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे टाइम के मामले में, आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कितने अंडर प्रेशर आप काम करते हो और फिर उसको आप किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उस वीडियो में बताया गया है। तो या आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न।
12: ओके, एनी आइडिया लगभग कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपने पहला काम जो है ये शुरू किया था?
11: जहां तक मुझे याद है कि मैं जब 16 इयर्स के आसपास होगा तब मैंने मेरे पापा को सपोर्ट करना शुरू किया था उनके बिजनेस में। और उसमें फिर ग्रोथ भी की थी, जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी है या कुछ जैसे फोटोग्राफी रिलेटेड है या प्रिंटिंग के रिलेटेड है, तो वो हमारा बिजनेस हुआ करता था पापा का, तो उसके अंदर मैंने वो स्टार्ट कर दिया था, मतलब लर्निंग फेज मेरा वहां से शुरू हो चुका था। और फिर 1-1.5 साल में आई यूज टू टेक ओवर एवरीथिंग और मैंने प्रॉपरली हैंडल किया था।
12: ओके, थैंक यू एफर्स आपके कॉल के लिए, टाइम के लिए, एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग?
3: आई थिंक 18 इयर्स की थी मैं जब मैंने पहली बार काम करना जो ये शुरू किया। सो देयर इज अ लॉट दैट यू लर्न, और बेसिकली यू लर्न दैट फैक्ट कि जो कंफर्ट जोन में हम होते हैं ना, जब हम नौकरी नहीं कर रहे होते, वी यूज्ड टू अ सर्टेन एनवायरनमेंट, बीट आप अपने घर के एनवायरनमेंट में हो या पढ़ाई कर रहे हो तो स्कूल के एनवायरनमेंट में, यू यूज्ड टू योर टीचर्स एंड योर स्कूलमेट्स, बट जब आप नौकरी कर रहे होते हैं देन यू गेट दैट एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस बाकी के लोगों के साथ जो बेसिकली आपके कस्टमर्स या क्लाइंट होते हैं। बट दैट वन थिंग दैट आई लर्न क्वाइट अर्ली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग वाज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि जब आप खुद के पैसे कमाते हो वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है और उससे आप कितना इंडिपेंडेंट फील करते हैं।
12: ओके, गुड मॉर्निंग परविंदर।
14: गुड मॉर्निंग,
12: कैसी हैं आप?
14: आप अच्छी
12: हो? हम भी ठीक हैं,
14: बताइए। मैं जब इंडिया में काम करती थी ना, तो मेरे घर पे तो कल्चर नहीं था पहले ही काम करने का ना। मेरे पापा ने बोला था कि पहले आप पढ़ाई पूरी करो, बाद में तुम बोलोगे अच्छा हम काम करते थे ना इसलिए पढ़ाई, इसलिए स्टडी पे इफेक्ट हो गया, तो इसलिए तुम पहले पढ़ाई करो। तो मेरा और मेरा फर्स्ट जॉब, मैं टीचिंग में रही हूँ शुरू से ना, तो मेरा फर्स्ट जॉब टीचिंग से ही था, तो इतना मतलब हाँ सीखा, बट इतना लाइव लेसन टाइप मुझे लगता मैंने उससे सीखा। बट जब मैं यहाँ पर आई थी, मेरे उस मतलब यहाँ पे ऐसा होता ना कि आपको काम करना ही करना है आप खुद का सर्वाइवल के लिए, तो यहाँ तो मैं आउट ऑफ बाउंड जाके भी मैंने काम किया है। जैसे मेरा पहला जॉब था फांगा प्रोवा में,
12: okay.
14: तो मैं सुबह इतनी जल्दी उठती थी और बस में जाती थी, 1 घंटा लगता था, तो मुझे ऐसा लगता है ना मैं वहां से थोड़ा स्ट्रगल करना सीखा है। अब तो जैसे मैं किसी को सुनू ना बोलते हैं यहाँ से अगर साउथ से अगर सेंट्रल में भी जाना तो कहते अरे बहुत दूर है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि दूर नहीं है साउथ से सेंट्रल जाना। मतलब मैंने इसे सीखा कि अपॉर्चुनिटी के लिए आप कहीं भी जाओ और करो, बस
12: करना,
14: वैल्यू
12: तो
14: करो उस चीज को.
12: थैंक यू, या थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए. और 800-00 हम और 800-00-4866 ये हमारा नंबर है. वीड लव टू नो व्हाट्स योर टेक. आपने इफ यू डोंट माइंड आस्किंग मी आस्किंग कि आपकी पहली नौकरी क्या थी, क्या करती थी आप?
3: आई वाज अ बेटिंग टेलर. आई यूज्ड टू वर्क एट एट लाइक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे टैब जैसा होता है ना,
12: लाइक
3: कोई टूर्नामेंट हो, मेजर टूर्नामेंट हो तो वहाँ पे आप बेट्स करते हैं, पैसे जो दांव पे लगाते हैं बेसिकली. तो मैं वहाँ पर टेलर की तरह आई वाज वॉकिंग, लाइक लोग आते थे एंड मोस्टली वहाँ पर जो रईस होता था, होस्ट रईस वगैरह, उस दौरान सो लोग आते थे बेसिकली पैसे लगाने के लिए. मेलबर्न कप यूज टू बी क्वाइट क्रेजी और उस दिन तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर अस. तो वहाँ पे द वर्स्ट थिंग दैट आई वुड से कि मैंने एक्सपीरियंस किया एंड उससे सीखा इस कि जब लोग आते थे और वो अपने पैसे जो है ये बेट्स लगा रहे हैं, आपको कुछ गलत सुनाई दे तो आप गलत नंबर जो है ये अगर एंटर कर दो तो उसके बाद वो चेक करते हैं. जब आप उनको रिसीट देते तो वो चेक करते हैं. तो कुछ इतने गंदे लोग होते थे, दे वुड लिटरली स्वे एट यू, लाइक लिटरली आपके चेहरे पर गाली देंगे, आपको एकदम बुरा बुरा फील कराएंगे. बट दैट हेल्प मी लर्न अ लॉट. मैं ढीठ बन गई ना इन अ वे, बिकॉज वहाँ पे काम करने के लिए आपको वैसा होना पड़ेगा. अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो कि कोई आपको कुछ बोल दे बुरा लग जाए, शुरू में आई वॉज लाइक दैट, आई यूज टू सिट एंड क्राई. बट देन धीरे धीरे मेरे बाकी कलीग्स जो काफी सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसा करोगे तो यहाँ नहीं टिक पाओगे, तो इसीलिए हैव टू बी यू नो बिट स्ट्रांग. वो बोल रहे हैं तो वैसे करो कि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, जो जरूरी चीज है बस उस पर ध्यान दो. सो दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब and it helped me a learn a lot, I would say. मेरा पहला experience था वो ना.
12: Okay.
3: So it was good.
12: आप भी हमें बताइए भाई, आपकी पहली नौकरी जो है ये क्या थी, the first job, you know, full time job जो आपने किया था वो कौन सी नौकरी थी, and maybe something you learnt at your first job, वो भी आप हमें बता सकते हैं. नंबर हमारा है कॉल करने का और 800-00-4866 या 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉल, और शेयर कर सकते हैं योर एक्सपीरियंस, योर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट कैसा था, क्या आपने अचीव किया, क्या आपने सीखा. गुड मॉर्निंग. हेलो.
15: हेलो विजय भाई, कैसे हैं आप?
12: ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
15: मैं भी बस बढ़िया
12: जी.
15: हाँ जी, तो मेरी पहली जॉब बड़ी अजीब सी थी. मेरी पहली जॉब थी कन्विंसिंग करना, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए.
12: अच्छा,
3: कन्विंसिंग मतलब
12: लोगों को मनाना,
15: कि इलेक्शन टाइम पे. हाँ, इलेक्शन टाइम पे उनको बोलना कि वोट करने के लिए.
3: अरे वाह, क्या बात है. आपको कैसे बढ़िया पे मिलता था इसके लिए?
15: पे तो बढ़िया मिलता था, लेकिन उतनी गालियां भी मिलती थी जब पूरा ना करो तो.
12: अच्छा, लोग मान जाते थे. अब आई डोंट नो आप किस पॉलिटिशियन के लिए थे या किस पार्टी के लिए थे.
15: बताया तो ना मेरे को, अब तो मैं इंडिया में हूँ नहीं तो मैं बता सकता हूँ. मैं पहले कांग्रेस में था.
12: अच्छा,
15: देन आई मूव टू आम आदमी पार्टी और एंड में जाके मैं बीजेपी में अटका.
3: मतलब तीन मेजर पार्टीज के लिए तो आपने किया ही किया है.
15: तो मेरे को एक चीज मैंने सीख ली इस लाइक इट बीन लाइक मोर देन 17 इयर्स कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं.
12: अच्छा,
15: जस्ट मेक देम हियर कि उन्हें क्या सुनना है, जो वो सुनना चाहते हैं उन्हें वो सुना दो और वो आपकी तरफ हो जाएंगे. सिंपल सही है.
12: वाह भाई,
3: यू लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट
12: टैलेंट.
3: टैलेंट, या
12: बहुत कमाल का टैलेंट आप में.
15: फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और वो स्किल जो मैंने वहां सीखा था वो एक्चुअली में बहुत बहुत ज्यादा काम आया मेरे को.
3: ये क्या, कौन सी कंपनी शुरू की आपने?
15: एक्चुअली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी इंडिया में, पावर रिहैब, जो होम रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो जब मैं यहाँ पर आया, आई हैड अबाउट 150 पेशेंट्स. तो उसके अंदर मेरे पास जो थे वो ज्यादातर थे ओल्ड एज, लाइक ओवर 70-75 समथिंग. तो मैंने उनके साथ अबाउट 7 साल तक काम किया. तो मेरे को पता चला कि उन्हें क्या सुनना पसंद है, बुजुर्गों को. दे जस्ट वॉन्ट टू हियर कि हाँ भाई कोई उनकी केयर करे, उनकी बातें सुने. तो मैंने, आप समझिए, मैंने बस बहुत सारे पेशेंट वो भी थे जो 1947 से पहले पैदा हुए थे, तो उन सब ने मेरे को अपनी कहानियां सुनाई कि हाँ भाई पार्टीशन पे क्या हुआ, हम कहाँ पे रहते थे, क्या क्या, बहुत सारा कुछ. तो उससे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल मेरे और ज्यादा बेटर हुए. पता चला कि हाँ भाई लोगों को कम्फर्ट कैसे करते हैं, इफ यू कैन कम्फर्ट समवन वो आपकी तरफ हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे चीजें मैंने सीखी. इफ यू कैन लाइक मेक देम हियर कि हाँ भाई वो क्या सुनना चाहते हैं, आपने उन्हें वो सुनाया तो आपकी तरफ है. जैसे मैं आपकी तरफ हूँ इस वक्त,
12: थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए भाई. वो क्या कमाल की बातें इनकी रही है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
16: गुड मॉर्निंग विजय जी. गुड मॉर्निंग पूजा.
3: बढ़िया जी, बढ़िया. सपना आप सुनाओ, आप कैसे हो?
16: बस सब ठीक है, सब बढ़िया है. ये फर्स्ट जॉब मेरी जो फुल टाइम थी दैट वाज इन होटल. इंदौर में बहुत बड़ा ग्रुप है, श्रीमाया ग्रुप ऑफ होटल्स, उसमें था मेरा फर्स्ट जॉब. और अभी मैं वहीं जाके रुकती हूँ, उसी होटल में जाके रुकती हूँ व्हेनेवर आई गो बैक टू माय होम टाउन. तो ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि आपकी क्या लर्निंग थी, दिस वाज आस्क्ड बाय माय बॉस दिस टाइम व्हेन आई वेंट देयर. ही आस्क्ड मी तूने यहाँ पर काम करके सबसे अच्छी चीज क्या सीखी. तो मेरे को वो रिकॉल हुआ. तो इट वॉज लाइक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो मैंने वहां सीखा वो मैं शायद कहीं और नहीं सीख सकता.
3: थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू जी.
16: बहुत ट्यूशन वगैरह करे थे बट उसमें इतना नहीं, वो तो हाँ पार्ट टाइम था, जैसे कि स्टूडेंट थे तो उसके साथ साथ थोड़ा कर लेते थे. बट जो मैंने वहां सीखा श्री माया में उसके अलावा और कहीं नहीं सीख सकती थी.
12: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. अभी कॉल्स का तो उतना टाइम नहीं है लेकिन आप हमें टेक्स्ट करके बताएं कि आपकी पहली नौकरी क्या थी, क्या आपने किया था एज अ फुल टाइम जॉब या फर्स्ट,
3: और आपने क्या सीखा उससे.
12: हाँ, क्या सीखा, क्या था उस टाइम पे लाइफ लाइफ लेसन क्या आपको मिला था. सो
3: बट बिफोर वी मूव ऑन, आई नो ज्यादा टाइम नहीं इसलिए वी वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आप बताइए ना, सबका तो पूछ लिया, आप बताइए आपकी पहली नौकरी क्या थी, क्या कर रहे थे आप.
12: मेरी पहली नौकरी जो है वाज ऑफ अ सर्विस स्टेशन अटेंडेंट.
3: ओके.
12: पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करता था मैं.
3: ओके, एट व्हाट एज?
12: दैट टाइम आई थिंक लेट 17.
3: 17, ओके.
12: अराउंड 18 इयर्स का था देन आई जॉइंड रेडियो.
3: आपने क्या सीखा उस काम से, उस नौकरी से?
12: उस नौकरी से मैंने क्या सीखा कि कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता.
3: वेरी इंटरेस्टिंग.
12: यू कैन यू नो लाइफ में कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता और मेहनत करने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए. तो आप भी 5599 पर टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं.
17: Bollywood's most wanted.
18: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
19: मैं लाऊं अपना A game.
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: To save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
1: Ride dirty, keep clean with Dirtworks Bike Cleaner. Their powerful, eco-friendly formula removes even the toughest of mud while being gentle on the environment. Whether you've had a rough ride or an exhilarating one, Dirtworks makes sure your bike is always ready for action. Works on mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Get dirty on the trails and let them handle the cleanup. Keep it slick, keep it green and keep your ride pristine. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's Works with an X.
2: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
3: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
4: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
6: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
7: 17 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में और फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 का मैच साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच फिलहाल खेला जा रहा है और तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं खेल को पूरा होने में या फुल टाइम होने में अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं
8: सो मोर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे फिलहाल आप भी अपने मैसेजेस हमारे पास भेज सकते हैं ऑन 5599 बट रिमेंबर कि करण औजला जिनका जो आइकॉनिक गाना हमने कहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है उसके कई मैसेजेस आए हैं नॉट क्वाइट पॉसिबल कि हम हर एक मैसेज जो है फिलहाल पढ़े इतने सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं सो विल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी है अगर ऑटो रिप्लाई में आपके पास एक मैसेज आया है करण औजला इज ब्रिंगिंग हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड गेट योर टिकट्स फ्रॉम livenation.co.nz दैट मीन्स आपने सही तरीके से एंट्री भेजी है और आपका टेक्स्ट हमें मिल चुका है पूजा कपूर आई थिंक यू माइट बी द ओनली पर्सन जिसने गलत तरीके से एंट्री भेजी है तो दैट इज व्हाई आपको ऑटो रिप्लाई में सेम मैसेज नहीं आया है यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर लक जब नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए एक और एक एंट्री ओपन करें तो

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: accurate traffic.
1: Pre-order GTA 6 now.
2: 15:16 our high today. Fine spells increasing through the day into the city. Motorways are easing. Southern looking good. 35 minutes Manukau to town. Fine to East Tāmaki. Heavy most of the way in from there. Southwestern, bit heavy northbound through Whitty. Northwestern, 25 minutes in from Massey. Fine to the causeway. Slow from there. Heavy at Point Chev. Northern, 26 in from Constellation. Slow patches from there to the bridge.
1: Pre-order GTA 6 now at the warehouse before Tuesday and go in the draw to win a TV.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
4: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
9: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: बस 8 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे
12: तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमारे साथ बने रहिएगा और कुछ दिलचस्प जानकारियां जो है ये भी आपके नाम हम करेंगे सो बिफोर वी प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एक आर्टिकल जो ये मैं पढ़ रही थी और इसके बारे में आपको बता दें कि कई बातें जो है ये हो रही है एक्सपर्ट्स आर वार्निंग कि कुछ ऐसे AI कंपेनियन चैटबॉट्स है जिन्हें डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए एंड दे कुड बी पुटिंग यंग पीपल एट रिस्क न्यूजीलैंड में एक स्टडी की गई है बाय दी AI सेफ्टी फोरम और इन्होंने कई तरह के जो पॉपुलर AI कंपेनियन एप्स हैं इन्हें टेस्ट किया है एंड उनको पता चली है कुछ वॉरिंग रिजल्ट्स की जो रिसर्चर्स इन्होंने कहा है कि मैनी ऑफ द बॉट्स एनकरेज्ड हार्मफुल बिहेवियर इंक्लूडिंग वायलेंस रिस्की डिसीजंस और इन सम केसेस सेल्फ हार्म एज वेल एक चैटबॉट है जिसका नाम गुड रूडी बताया गया है एंड इट इज मार्केटेड एज चाइल्ड फ्रेंडली और इसे पाया गया था ऑफ यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज अबाउट पेरेंट्स जहां पर वो बच्चों को सिखाता है कि आपके पेरेंट्स जो है बहुत गंदे हैं और आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे चैटबॉट्स की वजह से स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप जो है ये भी खराब हो सकते हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ यंग पीपल क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स पर अपनी फैमिली पर ही भरोसा नहीं करेंगे एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग दिस AI कंपेनियंस तो फैमिली से दूर होंगे और रिस्क के और नजदीक हार्म के और नजदीक जो है ये बढ़ सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है और दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि कुछ AI सेफ्टी फोरम में जो न्यूजीलैंड के करंटली हैज नो स्पेसिफिक लॉ रेगुलेटिंग AI कंपेनियन चैटबॉट्स इसके बारे में काफी बातें हो रही हैं एंड दे आर कॉलिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर सेफ गार्ड बिफोर कोई सीरियस हार्म जो है ये सामने आए

0: accurate traffic.
1: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
2: Fine and cloudy weather today, a high of 15, maybe hitting 16 today. Into the city, motorways have eased up quite nicely. Northern just 23 minutes in from Constellation Drive, slow Glenfield to the bridge. Northwestern, 21 minutes in from Massey, fine at Point Chev, slow to the city from there. Southern, 33 in from Monaco, 42 Drury to town, fine to Penrose, heavy there to Ellerslie, then slow to the city. Southwestern, not bad.
1: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, Art, Kapahaka, Kai and more. 10th July.
3: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
4: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
5: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
7: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
8: Good morning, isme ek minute ho raha hai 9 bajkar.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A message to act that families are already stretched on woefully inadequate incomes. Its latest welfare policy is being presented as restoring fairness, personal responsibility and the value of hard work. But Child Action Poverty Group's Isaac Gunson doesn't see what's needed.
11: Any party's welfare policy leading up to this election should be judged by whether it reduces hardship and improves wellbeing and creates genuine pathways into secure work.
10: Shoppers are being warned of the trap that is loyalty cards. Consumer NZ says they allow supermarkets to learn individual shopping habits so prices can be adjusted accordingly. Police investigating an alleged assault in Dannevirke are looking into possible antisocial road user activity on the night. It happened last Sunday at the intersection of Laws and Topgrass Roads. Police are interested in footage or information on a group of vehicles. The exchange of strikes continues between the US and Iran as a ceasefire hangs in the balance. The Strait of Hormuz remains a scene of confusion and danger for freight as well. President Trump has threatened there could come a point where the US is forced to complete its job and Iran will no longer exist. To sport, the Black Caps are closing in on a Test Series win over England as Ben Stokes announced his shock international cricket retirement. The captain admits the on-field and off-field demands have become too much.
12: Brutal what we do, physically, mentally and all that. You know, what you have to put in and the hard work. Even that's just getting a bit tiring.
10: England are 103 for 4 heading into the final day at Trent Bridge, needing another 270 runs to win. And pole vault star Eliza McCartney's finished second at the Diamond League meet in Paris.
9: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy, and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari good brands bhi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: 11 and a half degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15 overnight kam se kam 6 degrees rahega. Aur aaj subah ke waqt kuch cloudy patches, baad mein chalkar mausam saaf ho jayega aur sunset sham 5:15 baje hoga.
9: The break Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: What's going on? क्या बकते हो?
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: तो आपके लिए व्हाट्स गोइंग ऑन में आज का जो अपडेट है या स्टोरी है ऑफ क्या बकते हो, ये हम लेकर आए हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेकर हम आते हैं विच एक्चुअली मेक्स अस से कि क्या बकते हो, मतलब ऐसा भी होता है क्या. बट दिस इज़ समथिंग विच हैज़ कम टू नोटिस और इसके बारे में काफ़ी बातें जो है ये हो रही हैं. एंड आई रेड दिस अबाउट जहाँ पर कहा गया है मैक्सिको के एक छोटे से शहर में एक मास्ट मैन है एंड इसे जाना जाता है एज बैटमैन ऑफ लागोस दे मोरेनो. तो लागोस दे मोरेनो इस जगह का नाम है और इसे वहां का जो लोकल बैटमैन है ये माना जा रहा है. ये शख्स जो कोई भी है, इसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, पर कहा गया कि ये वायरल हो रहे हैं बिना आइडेंटिटी के अपेरेंटली, क्योंकि इनके बारे में ये कहा गया है कि ये रात को चोरों को ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते हैं. र्यूमा हैज इट कि उनको पकड़ते हैं और फिर उनको जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होते हैं, फिर जो पोल्स होते हैं सड़कों पे, उसके साथ उनको डक्ट टेप कर देते हैं और फिर उनके फोरहेड पे लिख देते हैं थीफ यानी चोर. कुछ लोकल्स जो है इस बात को लेकर काफी खुश है कि ऐसा हो रहा है एंड जो चोर है उनको सबक मिल रहा है. लेकिन अभी इस मामले की जांच भी की जा रही है, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो अभी यू नो अपनी ओर से पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं टू फाइंड आउट द डिटेल्स कि क्या सच में ऐसा कोई शख्स है जो ऐसा कर रहा है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही वायरल स्टोरी क्रिएट करने के लिए हो रही है. बट फोटोज ऑफ सर्टेन पीपल टाइड और डक्ट टेप्ड टू पोल्स जो है जिनके सिर पर माथे पर चोर लिखा हो उनकी लोकल भाषा में, ये सारे फोटोज जो है ये भी फिलहाल सामने आए हैं ऑफ डिफरेंट पीपल. और ये स्टोरी जो है इसके बाद काफी वायरल हुई है.
8: दैट्स इंटरेस्टिंग कि भाई कोई चोरों को पकड़ रहा है और ही मस्ट बी क्वाइट स्ट्रांग बाय द वे चोर को पकड़.
15: नो आईडिया, क्योंकि उनकी असलियत जो है ये भी सामने आई नहीं है कि ये कौन शख्स है, तो ज्यादा पता नहीं है. खैर ये तो मैक्सिको की कहानी आज की क्या बकते हो में, लेकिन एक इंडियन कहानी भी आपको हम सुना दें. दिस वॉज समथिंग दैट आई केम अक्रॉस एंड आई वॉज लाइक सीरियसली मैन, मतलब वायरल स्टोरी क्रिएट करने के चक्कर में लोग क्या कुछ नहीं कर बैठते ना. अपेरेंटली एक वीडियो जो है कि वायरल हो रहा था जहां पर आगरा के एक जो ईंट की भट्टी होती है यहां पर एक शख्स को काम करता हुआ देखा गया. और ये जो शख्स है ये देखने में काफी वाइट यानी कि कोकेशियन बोलते हैं ना जिसको, यूरोपियन नहीं क्या बोलते हैं
8: पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता.
15: समवन हु इज लाइक वाइट बेसिकली, जो हम आम भाषा में गोरा बोलते हैं, मतलब सो एक शख्स जो इस तरह से दिख रहे हैं वो इस ईंट की भट्टी में काम कर रहे हैं. एंड उनकी एक वीडियो जो है ये सामने आई जहां पर से एक वायरल वीडियो जैसा या स्टोरी जैसा जो है ये इंटरनेट पर काफी लोगों ने देखा. और अपेरेंटली उस वीडियो में ये कहा गया कि इस शख्स का नाम एंडरसन है, ये भारत घूमने आए थे आगरा में और वहां पर उनका पासपोर्ट वगैरह सब चोरी हो गया. अपेरेंटली ये कहा गया कि ये नॉर्वे के है मेरे ख्याल से. और इसके बाद चलकर जब उनका सब कुछ चोरी हो गया तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था अपने देश अपने शहर वापस लौटने का. जिसके बाद चलकर अब ये पाई पाई के मोहताज हो गए हैं और फिर अब ये अपना जो गुजर बसर है ये इस ईंट की भट्टी में काम करते हुए जो ये बिता रहे हैं. बट द एक्चुअल स्टोरी केम लेटर जब एक शख्स जो है उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने वीडियो बनाकर ये कहा कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एंडरसन नाम के एक शख्स का जो कि किसी और देश से यहाँ पर घूमने आए थे और ये बात सामने आई कि उनका पासपोर्ट चोरी हो गया, उनके पैसे चोरी हो गए, उनका सामान चोरी हो गया एंड ही कैन नॉट गो बैक टू हिज ओन कंट्री नाउ. तो आज हम उन्हीं के घर हैं, उनसे ही बातें कर रहे हैं. और जब वो बातें कर रहे थे उनसे तो उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा कि भैया आपका नाम क्या, हिंदी में पूछा और फिर उन्होंने बताया कि उनका नाम है साहिल देसवाल. वो ओरिजिनली भागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. और ये जो भी वीडियोस वगैरह जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से कैसे बनाया गया, ये किसी उसके गांव वाले ने किसी ने बना के ऐसे मजाक में छोड़ा था ऐसा लगता है, बट वो वायरल हो गया. और इस वजह से वो सोच रहे हैं कि कभी कभी कुछ लोग जो है कैसे सर्टन चीज़ों पर विश्वास करते हैं ना विदाउट एनी वेरिफिकेशन. तो अपेरेंटली उनको जो स्किन कंडीशन है विटिल्गो ये है जिसकी वजह से उनका स्किन इतना लाइट कलर्ड है, उनके बाल भी ब्लॉन्ड है और इसी वजह से वो देखने में इंडियन बिल्कुल भी नहीं लगते. और शायद कहीं ना कहीं ये फेक कहानी उसी वजह से शुरू हुई.
8: क्या कुछ कर लेते हैं लोग भाई, ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी तो 8 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, और जो राउंड ऑफ 32 का मैच कनाडा और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था, ये पूरा हो चुका है। हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका, इंजरी टाइम में 92nd मिनट में कनाडा ने गोल बनाकर इस मैच को जीत लिया है, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर राउंड ऑफ 16 फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत। अब इंटरेस्टिंग होगा, कल राउंड ऑफ 32 के मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 5 बजे ब्राज़ील वर्सेस जापान, 8:30 बजे जर्मनी वर्सेस पेरेग्वे, और दिन में 1 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स भी आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
16: जैसे पत्ता कोई पानियों में बहता जाए, कहानियों में लगती है जो शुरुआत से।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: क्या कुछ हो रहा है ऑकलैंड में या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है, इन सभी चीज़ों की जानकारियां जो है ये हम आपको देते रहते हैं। याद रखें 8th of August को जो श्री रामलीला है ये होने जा रही है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये रामलीला रहेगा वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एव पॉपटोए में। और साथ ही में अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं एज ए क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर तो मास्टर अशोक से संपर्क कर सकते हैं 021-179-5459 पर।
4: और इसके अलावा वैसे आपको हम याद दिला दें कि आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी जानकारी आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आपके जो कम्युनिटी इवेंट्स है वो अन्य लोगों तक पहुंचे और उसका हिस्सा वो बन सके और यू नो कम्युनिटी के लिए जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो और बड़ा और बेहतरीन हो सके, तो आप अपने जो भी इवेंट्स हैं उसके लिए डिटेल्स हमारे पास ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर। रिमेंबर buzz@humfm.com पर आप हमारे पास इन्हें भेज दीजिए और ऐसे में आपके लिए ये हम व्हाट्सएप ऑकलैंड के दौरान और हमारे कम्युनिटी न्यूज सेगमेंट में ज़रूर लेकर आएंगे।
3: वैसे विलेज स्क्वायर स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम जो है ये होने जा रहे हैं। तीन लोकेशंस होंगे, पनेल कम्युनिटी सेंटर, बेलमोरल स्कूल और एप्सम नॉर्मल प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पर जो विलेज स्क्वायर हॉलीडे प्रोग्राम है हर दिन दो एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होंगे, एडवेंचर सीकर्स के लिए भी कुछ होगा। और साथ में आप तड़के सुबह एस एल एस 7:30 AM अपने बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं और इन पिकअप एज लेट एज 6 PM विद नो एक्स्ट्रा चार्ज। विलेज स्क्वायर .org.nz जो है ये आप विजिट कर सकते हैं। और भी कई जगह पर प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं। सेल्विन कम्युनिटी एजुकेशन, सेल्विन कॉलेज कोहिमारामा में जो स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम है 6th या 14th July को, एस्पायरिंग यंग कुक्स और साथ में कुकिंग फॉर टीन्स, क्रिएटिव काइंडनेस, डिलीशियस डम्पलिंग्स और सर्विंग फॉर किड्स, ऐसे कई प्रोग्राम्स अभी स्कूली छुट्टियों के दौरान होने जा रहे हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है एंड यू कैन टेक देम देयर।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

0: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल. इंडिया फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर.
1: एक जबरदस्त कहानी है.
2: और टाइटल क्या है फिल्म का?
1: वेलकम टू द जंगल.
0: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
3: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
4: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
5: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 मिनट हो रहे हैं, 9 बजकर, याद रखें कुछ खास आने वाला है और आपका अगले साल का ईस्टर जिसके साथ सॉर्टेड हो सकता है, नए फ्रेंडशिप्स, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, बहुत खाना पीना, हंसी मजाक और क्या कुछ होगा जानने के लिए हमारे साथ ही आपको रहना है। लेकिन अभी एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपको हम देने जा रहे हैं, क्योंकि जून का महीना खत्म और 18 तारीख जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे कृष्ण अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव। ट्राई विजन इवेंट्स की ये पेशकश द ग्रेट कॉमेडी नाइट, और पहली बार दोनों ऑकलैंड में एक साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओवर 1000 टिकट्स आर सोल्ड आउट, गिने चुने टिकट्स जो है ये आपके लिए बाकी रह गए हैं,
3: तो आपके पास भी मौका है कि आप इसका हिस्सा जो है ये बन सके। और ये जो गिने चुने टिकट्स हैं ये ऐसे ही ना जाने दे, बिकॉज वंस द शो हैपेंस फिर आपको ऐसे रिव्यू सुनने को मिलेगा कि यार शो बहुत बढ़िया था, इतना मज़ा आया, इतनी हंसी आई, लोगों ने इन्जॉय किया, एंड यू आर लाइक नॉट पार्ट ऑफ इट, तो आपको रिग्रेट तो होगा ही। एंड इफ़ यू डोंट वांट दैट रिग्रेट, यू ऑल्सो वांट टू इन्जॉय, यू ऑल्सो वांट टू हैव अ गुड टाइम, तो आप अपने टिकट्स bookmyevent.co.nz, रिमेंबर bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए ले लीजिए। और बुकिंग में कोई भी डिफिकल्टी हो तो 021-043-2720 पर आप कॉल कर सकते हैं। आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप टिकट बुकिंग करने के लिए आफ्टर पे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट फॉर यू एज वेल। 18th ऑफ जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप इनको परफॉर्म करता हुआ जरूर देख सकते हैं।
2: सो मेक श्योर यू ग्रैब योर टिकट्स, और अभी एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं। You could be amongst 1000 people, या 1000 से ज़्यादा। Actual tickets कितने बिके हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उनमें आप भी हो सकते हैं। 18th of July को ये बहुत ही ज़बरदस्त द ग्रेट कॉमेडी नाइट enjoy करने के लिए। और अगर आपको ये डबल पास जीतना है तो आपको करना क्या है, आपको बस लिखना है कॉमेडी, अपना नाम और उसे 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करना है।
3: That's it. It's so simple. सिर्फ comedy लिखना है, comedy, फिर उसके बाद में अपना नाम लिखना है और 5599 पर हमारे पास आपको भेज देना है। This is basically you telling us that you are interested in winning this pass, और इस वजह से हम आपका नाम ड्रो में शामिल करें।
2: तो दो गानों का वक्त हम आपको दे रहे हैं, अगर अभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो जैसे ही आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिले, अनटिल द नेक्स्ट टू सॉन्ग्स प्ले, आप कॉमेडी उसके बाद अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं।
0: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: एट बनिंग्स यू नो यू आर गोइंग टू गेट द लोवेस्ट प्राइसेस एवरी डे, बिकॉज़ वेयर यू फाइंड अ कंपेटिटर्स lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
3: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station,

0: going on. सबसे पहले तो आप में से जितने भी लोगों ने अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे पास भेजी है द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. और डेफिनेटली आपका नाम हम उस ड्रो में शामिल कर रहे हैं जहां पर आप जीत सकते हैं एक डबल पास. और ये डबल पास हम डेफिनेटली आज जाने से पहले बताएंगे किसके हाथ लगेगा.
0: और साथ ही में अब डेली राउंडअप में सबसे पहले अगर देखें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एक्ट पार्टी लीडर डेविड सीमो का कहना है कि अगर जो रिसोर्सेस मिनिस्टर हैं शेन जोन्स की तरह हालात उनके होते जहां पर ही रैक्ड अप नियरली $5,000 बाय हैविंग अ लिमोज़िन ऑन स्टैंडबाय तो उन्हें बहुत शर्म होती. स्टफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अभी तक रिफ्यूज या कन्फर्म करने से मना कर दिया है वेदर द होटल जोन्स स्टेड इन वॉज इन द बिल्डिंग राइट नेक्स्ट टू द कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था. और उसके बाद अब चलकर काफ़ी बातें जो हैं ये हो रही हैं और जो सवाल वगैरह पूछे गए उसके बाद चलकर कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज जो है ये किया है. और डेविड सीमो का तो ये भी कहना है कि यू नो आई'ड बी एम्बैरस्ड अबाउट जो कुछ भी हुआ है एंड मैं खुद ही इसके लिए पैसे जो है ये भर देता.
1: दूसरी ओर जियो नेट ने ये रिपोर्ट दी है दैट कल यानी कि संडे को जो 4.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ये आया था लोअर नॉर्थ आइलैंड के वेस्ट कोस्ट में लेट संडे नाइट. इनफैक्ट इसे रिपोर्ट किया गया था ये जो अर्थक्वेक है इट वाज सेंटर्ड 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ फंगनुई एंड इट वाज एट अ डेप्थ ऑफ 55 किलोमीटर्स.
0: न्यूजीलैंड के 24 साल के एक व्यक्ति पर ऑस्ट्रेलिया में चार नए चार्जेस लगाए गए हैं ओवर एलिगेशंस कि उन्होंने वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है ये शेयर किया था ऑनलाइन. ये एडिशनल चार्जेस जो है ये अनाउंस किए गए बाय द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम जब उनको पर्थ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में स्केड्यूल किया गया हियरिंग के लिए. ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के मुताबिक द न्यू चार्जेस इंक्लूड टू काउंट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल और उसके साथ एक काउंट ऑफ पोजेसिंग ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल और एक और काउंट जो है ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल. पुलिस का आरोप है कि व्यक्ति जो है इसने ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है उसे हासिल किया था और ऑनलाइन अन्य लोगों के साथ शेयर किया था. द मैन ओरिजिनली इनको फरवरी में चार्ज किया गया था और फेदर चार्ज जो है ये इन पर लगाए गए हैं और अब अदालती कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.
1: इसके अलावा एक और खबर जो है ये सामने आई है एंड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज इन रिगार्ड्स विद जो एक फार्मा है इन्होंने इनफैक्ट ये बात जो है ये कही है जहां पर वेरारापा जो है इनके बारे में इन्होंने कहा कि दे कांट कीप रिलाइंग ऑन टेम्पररी फिक्सेस क्योंकि फ्लड डैमेजेस जो है इसकी वजह से जो होता है टुरंगनुई रिवर में यहाँ पर जो ब्रिज है इसकी वजह से लोगों को बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. एंड द सेम हैज हैपेंड अगेन जहाँ पर ये जो ब्रिज है इसका ये डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से इट हैज कट अबाउट 460 होम्स नियर लेक फेरी एंड गुआई. वैसे ये जो ब्रिज है इट वॉज ऑल्सो डैमेज अर्लियर दिस ईयर और फार्मा का ये कहना है कि रिपीटेड फ्लडिंग की वजह से वीक फ्लड प्रोटेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये जो ongoing problems for families, farms, roads and power supplies इनके लिए अब unbearable होता जा रहा है. Officials का कहना है कि they expect the bridge to reopen around midday next week लेकिन कुछ ऐसे भी areas हैं जहां पर flooding अभी भी है और road closures और power outages का सामना लोग अभी भी कर रहे हैं.
0: आज तड़के सुबह न्यूजीलैंड में जो सबसे ठंडी जगह थी वहां पर temperature overnight जो है -4 degrees Celsius था और मेट सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक आज तड़के सुबह पुकाकी एयरपोर्ट पर टेम्परेचर्स ड्रॉप डाउन टू -4 degrees, माउंट कुक एयरपोर्ट -2 degrees और वानाका में टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू -0.6 degrees. और अगले कुछ दिनों तक इस तरह के मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है. आज अगर कहा जा रहा है वेदर अक्रॉस द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड और नॉर्थलैंड से नॉर्थ तारानाकी कोरोमंडल बे ऑफ प्लेंटी ताउमा रनुई इन सभी जगह पर मौसम साफ रहेगा जिसकी वजह से रात को काफ़ी ठंड पड़ सकती है. ऑकलैंड हैमिल्टन में आज का हाई जैसे हमने पहले आपको बताया है 15 डिग्रीज़

हो सकता है अक्रॉस तरनाकी तैहा पे कपिति कुछ क्लाउडी पीरियड्स आज आप एक्सपीरियंस करेंगे। सिमिलरली वायरप्पा और वेलिंगटन में भी कुछ हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन साउथ आइलैंड वेरी चिली -4 degrees ओवरनाइट यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये गया था। और उसके अलावा इलेक्शन जो है इसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां चल रही है, तो उस पर भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।

0: आज की पहली बात जो है, कहते हैं कि अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे।
1: क्या बात है भाई।
0: और दूसरी बात
1: जी,
0: जब तक घोड़ा रेस जीतता है मालिक को चने महंगे नहीं लगते।
1: ओह, एब्सोल्युटली ट्रू। तो जब तक आप फायदे के हो तब तक आप उनको महंगे कभी नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके फायदे के नहीं तो आपका जो वैल्यू है ये लोगों की जिंदगी में भी कम हो जाता है ना
0: जी।
1: चलिए, उम्मीद है इन बातों के साथ आप, आपसे जबकि इजाजत ले रहे जाने की, आपका बाकी का दिन बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का गुजरे। और बस इतना ही कहना है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
1: Shop Club Plus deals at New World North Island this week. Get La Farre roasted and ground coffee, select size, $7.99 each. Or Vitasoy unsweetened almond, coconut or oat UHT milk, select range, $2.89 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. A stretch of State Highway 3 north of Whanganui remains closed after a fatal crash. It's shut between Kaiwi Valley and Wat Livingston Roads. A detour is in place and drivers are warned to expect big delays. The Wairarapa Emergency Operations Centre is still activated to help communities cut off by wild weather. The Turanganui Bridge washout will need significant amounts of work, with teams aiming to have it reinstated towards the end of the week. The Longbush Road access route is currently the only road open in or out of Martinborough. Alarm bells are being sounded over supermarket data collection. Consumer NZ is concerned by how much information is picked up through loyalty programs. Spokesperson Gemma Rasmussen says it could promote dynamic pricing.
4: That is when they are using all of that data and input to make an algorithmic calculation on how much an individual could be willing to pay.
3: And a move away from copper appears to be driving the uptake of satellite broadband. Elon Musk's Starlink service now accounts for 27% of all rural connections. But the Commerce Commission says local providers are also holding their own, preferred by 46% of those looking to change. In sport, to the FIFA World Cup first and round of 32 football clash in Los Angeles on TVNZ+.
5: This is dropping nicely. It's a key!
3: Canada scoring 2 minutes into injury time to secure a 1-0 win over South Africa. And in tennis, local favourite Emma Raducanu has withdrawn from Wimbledon. The former US Open winner was due to play her opening round match tonight, but is pulled out with a lower leg injury.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: मौसम की तरफ अगर हम देखें, दी हाइज ऑफ 15, ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 6, आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है क्लाउडी डे है, लेकिन दोपहर के बाद क्लियर होता चला जाएगा. फील्स लाइक 11 डिग्रीज, 5:15 पर सनसेट बताया जा रहा है.
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
8: My Time with Kashika.
6: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 29 जून, देखिए पलक झपकते ये महीना भी खत्म हो रहा है. और ऐसे में आप लोगों ने अपने वीकेंड पर क्या किया भाई, बताइए. चलो चलो लाइन में लग जाओ, खड़े हो जाओ. आपने, अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने अपना वीकेंड कैसे मनाया? लेफ्ट राइट मत देखना, सीधे मुझे देखो, मुझे सुनो और बताओ कि क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला था कि नहीं निकाला था. देखो, जब इट कम्स टू मी, हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें कभी कभी कम्युनिटी के किसी ना किसी इवेंट पे जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं इनविटेशन आता रहता है, लेकिन कभी एक जगह आप उस पर एक नो लगा देंगे ना, तो समझ लीजिए आपके लिए वही पार्ट होता है जहाँ आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया. तो इतने सारे भगदड़, इतनी सारी कम्युनिटी और इतना सारा भाग दौड़ करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि ये थोड़ा सा एक इसमें अपना कहीं ना कहीं अपनी मसरूफियत में हल्का सा अपने लिए समय डाल दीजिएगा, तो देखिए उसके बाद आप कितने फ्रेश फील करते हैं. और मंडे के दिन आकर फिर ये नहीं कहते कि मंडे के ब्लूज हटाओ और काम पे लग जाओ, नहीं, बट आपको एक ब्राइट मॉर्निंग के लिए, मंडे के मॉर्निंग के लिए मैं काशिका आपके मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए आ चुकी हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है मंडे टू फ्राइडे. और ये जो हमारी भगदड़ चलती है ना, जहां मैं आपसे बोलती हूँ आपके लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है कशिश फूड्स के सौजन्य से ये आपके लिए बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। कशिश फूड्स जो एक जाना माना नाम है, जब आप कहीं पे भी ग्रोसरी आइटम्स खरीदने जाते हैं चमचमाते हुए ये नजर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए टेलीफोन लाइन पर आ जाएंगे लीगल एसोसिएट्स की टीम। तो कोई सवाल 5599 पे आप मुझे जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: आज एक्सपर्ट अड्डा में मेरे पास जो सवाल आया है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं चाहूंगी कि लीगल एसोसिएट से राज प्रदीप सिंह जी, जो हमारे साथ हर मंडे के दिन आ जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं। राज जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल हम एफएम लिसनर्स।
1: सर, मेरे पास जो सवाल आया है वो है, व्हाट इज द रेजिडेंस ऑप्शंस फॉर स्किल वर्कर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स?
2: Okay, yeah, it is very good, and this option is coming. It's called a skilled work experience pathway. और ये है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इट मींस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री नहीं है, एंड ये जो स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है, ये ही एक ओनली ऑप्शन है जिसमें ओवरसीज का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है रेजिडेंस पाथवे के अंदर। तो ये है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस पाथवे, इसको बोलते हैं। ये 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसका पे रेट, इसमें टोटल पहले बता देता हूँ, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन। अगर न्यूजीलैंड के हिसाब से देखो तो एनजेड्स को लेवल 1, 2, 3 के ऑक्यूपेशन है इनके अंदर, तो उसके अंदर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके अंदर जो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है दैट कैन बी ओवरसीज, एंड 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड के अंदर हो, ये तो वर्क एक्सपीरियंस का है। और अगर किसी के पास ओवरसीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो दैट कैन बी न्यूजीलैंड का, इंक्लूडिंग 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, वो भी चलेगा। 3 साल न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस एंड अगेन 2 ईयर्स न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस, टोटल 5। और इसकी सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है पे रेट की, इट मीन्स लास्ट के जो 2 ईयर्स है उसमें 1.10 times ऑफ द मिडन वेज चाहिए न्यूजीलैंड का, जो इस साल का जैसे $35 पर आवर, तो $38.50 पर आवर का। और जो ओवरसीज का वर्क एक्सपीरियंस है वो पिछले 10 साल में से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा। अब इसमें जो नॉर्मल पोजीशंस में बता दूं किस तरह की ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर हो सकता है प्रैक्टिस मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, पीए, रिटेल बायर, बुककीपर, ट्रांसपोर्ट और फ्लीट मैनेजर, फार्म सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे ढेरों ऑक्यूपेशन है जो अपने साउथ एशिया में लोग काम करते हैं और काम कर रही हैं। तो नेचुरल है पिछले 10 साल में से अगर 3 साल आपने ये किया है और आपके पास वेरीफाइबल वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, तो न्यूजीलैंड में सिर्फ आपने 2 साल काम करना है इन पोजीशंस पे, $38.50 पर ईयर अगर दिस साल स्टार्ट कर रहे हो, अगले 2 साल के बाद यू कैन अप्लाई रेजिडेंस विदाउट क्वालिफिकेशन विद अदर रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर इंग्लिश है, PCC है और मेडिकल है। तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है, एंड अगेन आई कैन अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ पीपल गेट इट कि ये कैसे हो गया। अभी तो न्यूजीलैंड में चल रहा था कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, ओवरसीज के वर्क एक्सपीरियंस के कोई पॉइंट नहीं मिलते। तो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने ऑप्शन दिए ये करेक्ट है, ओवरसीज का पिछले 10 साल में से 3 साल का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस प्लस 1.10 times ऑफ न्यूजीलैंड मेडन वेज इन न्यूजीलैंड फॉर 2 ईयर्स, एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर रेजिडेंस वीजा इन दिस, एंड अगेन दे कैन कॉन्टेक्ट अस। इसके अंदर और भी एक बता दूं, ट्रेवल कंसल्टेंट, ट्रेवल एजेंसी मैनेजर, तो इस तरह की भी ऑक्यूपेशन है जो बड़े ईजी है लोगों के, हाँ, जो एक्सपीरियंस है, तो बिना क्वालिफिकेशन के रेजिडेंस लेजा न्यूजीलैंड में, ये एक पाथवे। तो ऑफकोर्स इसके लिए कशिका जी आपको पता है कैसे डील करना हमारे साथ,
1: बिल्कुल
2: मिलना है,
1: बिल्कुल। और सबसे पहले तो आप लोग याद कर लीजिए legalassociates.co.nz की वेबसाइट, जिसमें आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक जहां इनका एड्रेस है और वहां फॉर्म मिलेगा टू टेक एन अपॉइंटमेंट एज वेल, और पहला अपॉइंटमेंट आपके लिए जो कंसल्टेशन होगा वो फ्री है। तो आपका जो एक मैजिक नंबर है मैं बताना चाहूंगी लीगल एसोसिएट्स का, वो 09279-9439, एंड हैमिल्टन ऑफिस का है 02-56-00-036। legalassociates.co.nz की वेबसाइट पर आप जरूर क्लिक करें और बाकी की इन्फॉर्मेशन वहां से पाएं। राजी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और आज आपने एक बहुत अच्छा पाथवे हमारे लिए सोचने के लिए छोड़ दिया है। थैंक यू वंस अगेन।
2: थैंक यू कशिका जी।
0: माय टाइम विद कशिका।
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं?
1: याद रहे कि आपको अभी थोड़ी देर में ऑफिस शाउट आउट भी मुझे देना है, जल्दी कीजिए, 5599 पे टेक्स्ट कीजिए।
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप, वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। have lots of fun basically with
5: क्या?
6: The cold weather.
5: कौन है?
6: हुनुआ और वेटाकरे.
5: अच्छा हुनुआ वेस्ट में.
6: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
9: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit AMI.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
10: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
11: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
10: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
11: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं
12: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
13: MediaWorks complaints. How can I help?
14: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
13: Thank you.
14: It's all I can think about.
13: What does it sound like?
14: Yeah, I'd rather not.
13: Go on, why don't you have a crack?
14: Okay, got a plumbing problem.
13: Oh, I need a bit more than that.
14: They've got your back.
13: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
14: Oh, okay.
15: There's no better plumber to give it a crack.
13: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
14: No, I want a plumber.
16: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
17: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
18: हाँ. अच्छा
17: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
18: मिसेस सिंह
19: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
20: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33

0: ऑफिस शाउट आउट की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ साथ हम कर रहे हैं आप, लेकिन आपने अपना नंबर बोला कि मेरे प्लीज़ मेरे ऑफिस का नाम मत वो अनाउंस करना, क्योंकि मैं बहुत क्वाइटली आपको सुनता रहता हूँ. सो थैंक यू सो मच. 2659 आपने कहा, बस ठीक है, मैंने आपको एक्नॉलेज कर लिया है. तो आप हमेशा ऑफिस में बैठे हुए आप डेफिनेटली हमको लगाते हैं, ख़ास तौर पे जब म्यूज़िक बजता है आपको बहुत पसंद आता है, कुछ बातें आपको बहुत पसंद आती हैं. सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, आई कैन से दैट. तो आप लगाए रखें, इसी तरह से हमारे साथ साथ जुड़े रहें. लेकिन एक चीज़ के साथ साथ मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आपका दिल ज़रूर लगने वाला है, ख़ास तौर पर अगर आप गुजराती हैं. तो सिद्धार्थ रंदेरिया ये आ रहे हैं गुज्जुबाइनी ऑफ़र लेके आपके लिए, और ये गुज्जुबाइनी ऑफ़र आपके लिए इसी 3rd of July के दिन 7:30 बजे, यानी कि इस हफ्ते इसी फ्राइडे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है. आप इसे मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धार्थ रंदेरिया का जो गुज्जू प्रोडक्शंस हैं हमेशा सेल आउट हो जाता है. और लास्ट मिनट के लिए टिकट्स को बिल्कुल मत छोड़िए. इनको मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर माना जाता है. यू कम्स लाइव ऑन द स्टेज और इनका एक्सपीरियंस एकदम से मैजिकल होता है. सो डेफिनेटली जाइए और फटाफट premiertickets.co.nz के जरिए जाके टिकट खरीदिए.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है. दिस इज द टाइम जहां आपको कुछ जीतने के लिए मौका आ रहा है. आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड करने वाली हूं. एक गाना मैं प्ले करने वाली हूं और करण औजला का, ऑफ कोर्स. और ये गाने का आपको टाइटल बताना है कि इस गाने का टाइटल क्या है. ठीक है, करेक्ट एंट्री जो है उसका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. सो के ए करण औजला का के ए लिखना है 5599 पे आपको मुझे टेक्स्ट करना है. याद रहे, करण औजला आ रहे हैं पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर. ऑन दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, क्योंकि चार्ट टॉपिंग जो हिट्स हैं आपके लिए, उनके एंथम्स जो हैं आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे. 25 अगस्त को ये करने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स अ स्पेशल गेस्ट इकी जो है इनको ज्वाइन भी करने वाले हैं. तो डेफिनेटली आपके लिए अनफॉरगेटेबल नाइट होगी. वैसे हम rova.nz पर आप क्लिक कर सकते हैं टिकट्स के लिए, या livenation.co.nz पर. स्पा करीना में 25th ऑफ अगस्त को ये परफॉर्म करने वाले हैं. मैं गाना बजा के फेड आउट करने वाली हूँ. आपको पहचानना है कि गाने का टाइटल क्या है. के ए लिखिए 5599 पे, अपना नाम लिखिए, हम तक पहुँचा दीजिए.

में आज क्या रहा? आज कनाडा की जीत हुई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और ये तो खैर अच्छा ही रहा। और ऐसे में यू नो आई कैन से बोथ वर ऑन थ्री, अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रिया कल का था इक्वल थे, और साथ साथ कल के मैच में अर्जेंटीना हैज़ कम फॉरवर्ड एंड ये इन्होंने 3 पॉइंट से जीत ली फ्रॉम जॉर्डन।

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: Not everyone's path starts in February. Maybe uni didn't feel right. Maybe you're still figuring things out. Start ahead with SIT. Jump into certificates and diplomas with flexible study options. And as the first to do zero fees, SIT could help your qualification cost a fraction of what you'd pay elsewhere. Study online or on campus and start building real skills for the future.
6: Say yes to success and zero fees. Say yes to a smarter future with SIT.
7: Start ahead at sit.ac.nz. SIT, a smarter choice.
8: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: सबसे पहले तो लेट आया आपका, you know, office shout out. इकोनो वेस्ट फेन्यूआ पाई से आपने भेजा है, थैंक यू सो मच. आप सुन रहे हैं हमें, आई लव्ड इट. एंड मानसी सहनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर है बिल्ली आंख. एंड मैंने आपका नाम ड्रॉ में कर दिया. बाकी जितने लोगों ने भी लिख के भेजा है, सॉरी ये आपका आंसर सही नहीं आया. इसके साथ साथ आपने लिख के भेजा है, गुड मॉर्निंग कशिका जी, होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज सपना. हाउ डू वी क्लेम द टिकट्स वी हैव वन फॉर उस्ताद राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी भी प्रमोशन चल रही है. जैसे ही प्रमोशन एंड होगी, सबको टिकट्स मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट टू मच, ओके? अच्छा चलो, पहुँचते हैं सपनों की दुनिया में.
9: ड्रीम डायरी.
10: जब मैं सपनों के बारे में बात करती हूँ ना, तो वैसे एक बात बता देती हूँ, साइंटिस्ट अभी भी ये रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे सपनों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस का क्या कनेक्शन हो सकता है. लेकिन ये तो क्लियर है कि ये पढ़ता है, पता चलता है कि जो स्ट्रेस ड्रीम्स की मैं बात करती हूँ तो वो अलग हैं. और जो कोई हम अपनी कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, बस बार बार वही कष्ट करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा काम हो जो हमें लगता है नामुमकिन हो, लेकिन ये हमारे को हर बार याद दिलाता है कि सपने में जब आँख खुलती है उसके बाद आपको लगता है कि यही सपना हमें फिर से दोहराने लगते हैं. ये सब हमारी हर रोज़ की फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी एक अजीब रिफ्लेक्शन लेकर आती हैं. और सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं. कभी कभी सिंपल रेपिटिशन हो सकती है, तो कभी कभी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस जो हैं हर वक्त जो आप फेस करते हैं, तो आपके लिए कभी कभी ये हेल्पलेसनेस बनती चली जाती है. सो डोंट वरी टू मच. अगर आप का जो आज कंसर्न था, आपने कॉल करके मुझसे पूछा, तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू इंटरप्रेट दिस कि हाँ भाई, ये आपको एक ड्रीम आता है, लेकिन क्या सबके इंटरप्रिटेशंस सेम होते हैं? नहीं, सबके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट ही होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस. एंड अच्छा, अब मैं जब मैं पहुँचती हूँ आपको बताने के लिए कि क्या खास हुआ है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो स्टॉर्म आया था, दे हैव गॉट आइसोलेटेड फॉर सेवरल डेज. उनके पास पावर नहीं है और ये जो रिवर लेवल्स हैं काफ़ी ऊपर हो गए थे. वायरा

पर डिस्ट्रिक्ट की मैं जब मैं बातें करती हूँ तो जितने भी वायरारापा की कम्युनिटीज़ थी जो साउथ थी ब्रिज के, वहाँ पर दे वर कट ऑफ, जबकि वो जो ब्रिज था वो कट ऑफ हो चुका था, वो वॉश आउट हो गया था बाय फ्लड वाटर्स। अब आप सोच सकते हैं 460 घर इससे उनको इफ़ेक्ट हुआ था। और लेक फेरी के आसपास, केप पैलेसर के आसपास कम्युनिटी जिनकी लाइफ उस ब्रिज को क्रॉस करने से होती थी, दे गॉट कट ऑफ एंड दैट्स इट। काम इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो वायरारापा के जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है अभी भी काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर एंड असिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी।

थ्रोबैक में मैं आपको एक ऐसे गाने की तरफ लेके चलती हूँ और ऐसी एक्ट्रेस की तरफ लेके चलती हूँ जिनकी आंखें बोलती हैं, जिनकी मुस्कुराहट बोलती है, एंड दैट्स नन अदर देन माधुरी दीक्षित. एंड इन्होंने अपना ये एक पर्टिकुलर ये जो आंखों का मूवमेंट था और अपने अदा का मूवमेंट था, इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. और आई वॉज़ फॉर्चुनेट इनफ टू वॉच माधुरी दीक्षित लाइव. जब मैं एक झलक दिखलाजा के सेट पर गई हुई थी तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा, इन्होंने लिटरली वो आंखें अपनी वैसी गोल गोल करके घुमाई और उसके बाद से लगता है इनको लोगों ने, वैसे देर इज़ नो कंपेरिजन टू द टू, मधुबाला जी एंड माधुरी दीक्षित जी, बट इनकी शोखी, इनकी अदाएँ काफ़ी हद तक लोगों ने कहा उनसे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करी जाती हैं. चलो पता नहीं आपका क्या व्यू है इस बारे में, लेकिन गाना सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्रॉम द मूवी राजा, जिसमें संजय कपूर इनके साथ थे. 2 जून को ये फिल्म रिलीज हुई थी 1995 में.

0: एवरीवन, नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए स्टूडियो की घड़ी में 11:03 हो रहे हैं। ऐसे में आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका स्टूडियोज में अभी भी हाजिर हूँ, और जब मैं बात करती हूँ अभी भी हाजिर हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक जो हूँ, और तब से अब तक आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस भी करती हूँ। बहुत सारी बातें ऐसे भी होती हैं जो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर जान लें, और उन्हीं में से एक बात ऐसी है जो आई थिंक बहुत लोगों के दिल के करीब हो गई है। क्योंकि कभी कभी आप महसूस करते हैं कि अरे ये फेस में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कुछ मेरे पास जानकारी है जो मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं? आप 104.2 FM के ज़रिए सुन रहे हैं, या फिर आप रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं? अभी रोवा ऐप पर आप आ ही गए हैं तो हम रिवाइंड आप 60s and 70s के ट्रैक सुन सकते हैं। 80s के जूक बॉक्स में आप जा सकते हैं सदाबहार गानों को सुनने के लिए। अगर आपको फीजी भजन में इंटरेस्ट है तो 24/7 ये आपके लिए स्ट्रीम करता है। कि प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है, आपके गाने पंजाबी आपको पसंद है, चढ़दी कला आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आती है, फीजी कीर्तन संग्रह जिसमें नए आर्टिस्ट का एक पूल ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है, और राहत फतेह अली खान जो अगले महीने आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, भाई इनका भी एक प्यारा सा म्यूजिक स्टेशन तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, कहीं पे आपको लगेगा वीडियोस यू में लाइक एंड थिंग्स लाइक दैट, कुछ इन्फॉर्मेशन, भाई कुछ टिप्स ऐसी होती है जो मुझे लगता है आप तक हमेशा रहनी चाहिए, आप उसको रेफर करते रहें। जैसे कि डिफॉग कीजिए अपने विंडस्क्रीन को, उस तरह के कुछ वीडियोस भी मैंने आपके लिए पोस्ट किए हैं, तो रोवा ऐप पर जाकर आप उनको डेफिनेटली देख सकते हैं। कशिश फूड्स की ओर से माय टाइम आपके लिए आ रहा है 12 बजे तक, एंड मेरे साथ जरूर देते जाइएगा। कीप एंजॉयिंग।
1: बचाओ क्या,

0: say mere oof.
1: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
2: याद रहे 6 वर्ड स्टोरी भाई, प्लीज भेजो 5599 पे. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट.

0: एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप विंटर के टाइम पे अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को रिपेयर और नरिश ज़रूर कर सकते हैं, एंड इट्स द राइट टाइम. सो अलॉन्ग विद ईटिंग वेल, अगर आपका विटामिन डी, रेगुलर एक्सरसाइजेज, अगर आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि जो आपके जो के विंटर के ब्लूज़ हैं काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे ग्लोइंग ब्लू बन जाते हैं. और ऐसे में अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हेड स्ट्रेट इनटू अ क्लिनिक या फिर सरेंडर करें विद अ स्किल्ड थेरेपिस्ट. अच्छा, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको रिलैक्स ज़रूर कर सकते हैं, एंड वेन यू गेट यूज टू देम इट्स लाइक BBL, मॉक्सी ट्रीटमेंट, इस तरह के पावर हाउस स्किन रिजुविनेशन के कॉम्बोज आपको मिल जाते हैं. और कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि तरह तरह की जो चीज़ें हैं इट वर्क्स वेल. अब BBL जो है इट वर्क्स ऑन एनी काइंड ऑफ ब्राउन स्किन, रेड डिसकलरेशन आपकी स्किन पर अगर आने लगता है. और मॉक्सी जो होता है इट्स लाइक अ नॉन एबलेटिव जो है फ्रैक्शनड लेज़र होता है, और फिर वो स्किन टेक्सचर पे आना शुरू हो जाता है. सो एक फुल ट्रीटमेंट अगर आप 90 मिनट्स का ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है. वो एक BBL होती है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, कुछ एक नंबिंग क्रीम होती है, उसके बाद से वो इफ़ेक्ट लेकर आती है, एंड देन इट इज़ विद मॉक्सी. तो उनका ये कहना है कि एज आई सेड, रिमेंबर कि SPF आप ज़रूर पे आप लगाया करें अपने, चाहे विंटर मंथ हो, समर मंथ हो, आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं. ड्यू टू द रिडक्शन, जहाँ ह्यूमिडिटी में कम हो जाती है और इंडो हीटिंग बढ़ जाती है, हमारी स्किन जो होती है इनक्रेडिबली ड्राई होनी शुरू हो जाती है. ऐसे में आपको अपने कॉम्प्लेक्शन, अपनी स्किन केयर का रूटीन घर पर भी मेंटेन करना है. आपकी स्किन को आपको अच्छी तरह से रिपेयर करना है. 30 to 60 मिनट्स की एक रिलैक्सिंग एवरी फोर्टनाइटली अगर आप एक मसाज करें फेस पे, एंड फिर आप डीप क्लेंजिंग करें, इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं. आपकी स्किन में वो पेनिट्रेट होती हैं और उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं. और जब ये चीज़ें आप करते ही करते हैं, कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा रहता है, लेकिन ये जो फेस की मसाज होती है आप डेफिनेटली घर पर भी कर सकते हैं. और आपकी जॉ मसल के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको आपको स्ट्रेच करना होता है. These things are very, very important. You must give it a shot. You must give it a try. मगर एक टिप रहेगी मेरी ओर से, stay hydrated, listen to your body, और कोशिश कीजिए योगा, मेडिटेशन या फिर वॉक ज़रूर कीजिए. अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस कीजिए ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे. बेली ब्रीदिंग करने की कोशिश कीजिए एंड सी द डिफरेंस व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. यू विल फील काम, यू विल फील नाइस अबाउट इट. फेशियल मसाज डेफिनेटली ट्राई करें.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ न

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rover par.
1: Maddie didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump.
1: That should do, but it didn't do it. Did it, Maddie?
2: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
5: SmartPay is now
6: Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
5: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
6: Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
7: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
8: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
7: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
8: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: So, एक business जिनके नाम से चलता था, and there's a tribute to Les Mills, जो MBE, CNZM, जो हैं, on behalf of the Mills family, बहुत उन्होंने एक information जो पास की, जो senior Les Mills हैं, he passed away. एक versatile sports person, successful business owner, inspiring leader, and also he was the former mayor of Auckland. Leslie Roy Mills, MBE, CNZM, he was an absolute legend. Definitely, this is really very sad. बहुत ही लोगों को उन्होंने inspire किया around the world with the love of fitness as well. पहुंच रहे हैं हम six word story की तरफ. Rest in peace, sir.
9: Six word story.
10: तो मेरी आज की जो six word story है आपने already इसे जिया ready कर दिया है. Thank you very much. And आपने लिख के भेजा. Namaste Kashika ji, this is Jia. My six word story is. Every second is a new beginning. Every second is a new beginning. I totally relate to what you are saying and I am with you. जहां आप कहते हैं कि every second is a new beginning. All right. अच्छा अब आप thank you very much for this. आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि Easter 2027 के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अगर मैं कहूँ एक कहानी बनाते हैं, ठीक है? Sunrise views, new friendships, road trip. प्लेलिस्ट हो बहुत ज़बरदस्त खाना खूब हंसी मजाक मस्ती अरे भाई ये कोई मूवी नहीं होगी ये आपके साथ स्टोरी बनाई जा सकती है एंड दिस कुड बी योर ईस्टर 2027 भाई इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी जल्दी मिलेगी क्या है मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली करने वाली हूँ याद रहे आपको हमें सुनते ही चले जाना है और एक चीज़ और है जो आपको सुनना है AI इज़ एवरीवेयर बट क्या हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है वो चलिए AI के स्पेशल दर्शित पांड्या जो हैं सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर प्लेटफॉर्म ऑफ सेरको ये जो है कुछ एक ब्रेकडाउन दिया है उन्होंने अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ डज दैट मेक सेंस फ्रॉम चैट जीपीटी टू AI जहाँ सिक्योरिटी की जॉब्स हैं प्राइवेसी की कंसर्न्स हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की बात होती हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे ये इन्होंने शूट आउट किए किन्होंने हमारे टॉम एंड जेरी यानी सैंडी और रोजवे ने। आप भी इसे कैचअप कर सकते हैं अनफिल्टर्ड ड्राइव में, जहाँ पे 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजिए, पूरा ऑडियो सुन सकते हैं। और कुछ टिट्स एंड बिट्स जो हैं आपके लिए, जो हैं वो विजय एंड पूजा के ब्रेकफास्ट शो के छेड़खानी मस्ती जो अगर आप चाहते हैं वो मैं मिस आउट अगर आप कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप इनको सुन सकते हैं BF लिख के। तो याद रहे, एंड आई हैव गॉट अनदर वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। आपने नाम नहीं लिखा बट आपने लिखा एवरी सनराइज प्रोमिस्ड अनदर फ्रेश बिगिनिंग। या आई टोटली अग्री। सो द सिक्स वर्ड स्टोरी एक्चुअली इफ यू गो टू सी एवरी सेकेंड इज अ न्यू बिगिनिंग। जिया आपने भेजा, ठीक है, 8477। उसके बाद 4281 आपने भेजा एवरी सनराइज प्रोमिस्ड अनदर फ्रेश बिगिनिंग। बिल्कुल, तो हर नए दिन की हम शुरुआत करते ही करते हैं, हमारी अपनी एक नई कहानी वहाँ पर तैयार हो जाती है। I loved it. Thank you so much. Coming up next, lots of other things which you will be interested in. Stay tuned and keep humming on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Mere saath Kashika ke saath, all the way up till midday.
9: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: एक ऐसा कलाकार आ रहा है, दोबारा से आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोग कहना चाहेंगे ओ माई गॉड. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, जो नेक्स्ट मंथ 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्म करने वाले हैं. अपनी टिकट्स खरीद सकते हैं bookmyevent.co.nz के जरिए. हाँ, आपके लिए एक ऑप्शन है अब, जहाँ पर मैं एक डबल पास आपको जिताने के लिए आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ. बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कृष्णा अभिषेक किसके भांजे हैं. और आपको ये जवाब बहुत ही ईजी तरीके से जब देना है, कॉमेडी लिखिए आप, और उसके बाद आपका जो डिटेल होता है अपना आंसर लिखिए. याद रहे, कॉमेडी लिखिए, अपना आंसर लिखिए, हम तक पहुंचा दें. कृष्णा अभिषेक किसके भांजे हैं. ट्राई विजन एंटरटेनमेंट आपके लिए कमाल की रात पूरी एंटरटेनमेंट से भरी हुई राजीव ठाकुर के साथ और कृष्णा अभिषेक के साथ लेकर आने वाले हैं. VIP टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, तो जल्दी जाइए फटाफट. ये डील्स चल रही हैं ट्राई विजन की ओर से और आप जाकर फटाफट खरीद सकते हैं. हंसना मना नहीं है, हंसिए, जोर से हंसिए. और आपका टाइम शुरू होता है अब.
4: 80s के रेट्रो गाने,

नो, घर में कभी कभी ऐसा होता है जब हमें लगता है कि ओहो इतनी सारी यू नो करी बच गई है, अब इसका क्या करें. सो एक बहुत ही सिंपल तरीका, वैसे आप लोग अपने करीज जो बच जाती हैं उनके साथ क्या करते हैं? मेरे पास दो तरीके हैं. एक तो तरीका है जैसे जस्ट करी करी अगर बच गई, सपोज़ कीजिए आपकी, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जनरली मैं या तो एग्स बॉयल करके डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से एकदम टेस्ट आए और फिर आप उसको दोबारा से उस करी को इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया. दूसरा हो गया जैसे कभी चिकन करी वगैरह बनाई तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो चिकन करी बनाने के लिए मोस्टली मेरी जो डॉटर है उसको बहुत पसंद आता है ये कि जो चिकन और करी वाला करी बच जाती तो उसका अगले दिन मैं प्याज व्याज तलती हूँ, उसको गुलाबी करती हूँ, उसमें दालचीनी और तेज़पत्ता वगैरह सब डालती हूँ तेल में, और उसके बाद प्याज डालने के बाद उसको गुलाबी करती हूँ प्याज को बस, और थोड़ा अदरक लहसुन डालने के बाद गोल मिर्च तेज़पत्ता ये सब चीज़ें आपने खड़ा मसाला आपने ऐड कर दिया और बस उसमें आपने वो चिकन करी डाल दी और राइस डाल दिया आपका, मतलब ऑफ कोर्स मसाले तो डालने ही पड़ेंगे जो आप बेसिक मसाले डालते हैं, बस आप ये सब कर लीजिए. एक चिकन का पुलाव बहुत अच्छा बनकर आता है. अब मैंने तो इसको टेस्ट आजमाया भी है और टेस्ट भी किया हुआ है, टर्न्स आउट वेरी वेल. अब आप सोच रहे होंगे कि वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है. अभी वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ सकते हैं. उसमें एक ऑप्शन तो ये है दैट अगर ये जो करी आपकी बच जाती है, सपोज़ कीजिए आप इस करी के अंदर अपने पनीर की क्यूब्स बनाई बड़ी सारी और वो भी ऐड कर सकते हैं, तो आपका अच्छा खासा पनीर की

टाइम आ चला है जहां पर मैं आपसे कहूं कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी दमदार, जोरदार और जानदार बना रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। और आप लोग हमेशा फ्रेश एज डेजी, जिसे कहते हैं ना, बने रहे। ठीक है, अभी आपकी फ्रेशनेस में और भी निखार लेकर आने वाले हैं नाना ददन केतन, इनका साथ जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। Bye.

नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो लंच बॉक्स शो में। वेल यस, कैसा जा रहा है आपका मॉर्निंग? अभी तक अभी आफ्टरनून हो चुका है, लेकिन यस अभी तक का मॉर्निंग कैसा?